ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए कुछ पल प्रतीक्षा करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों

0: का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। ये वक्त अर्चना का है। अर्चना कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

बस मन में भक्ति का भाव हो, फिर किसी भी नाम से हम उसका स्मरण कर सकते हैं। ये है अनूप जलोटा।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त के हस्तांतरण के अवसर पर हुगली पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समय एक बार पुनः बता दें, दोपहर 3:55। आज शाम 5:30 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्य से भेंट वार्ता आप सुन सकते हैं। विषय होगा सतह से शिखर तक योग का सफर। भेंट करता रहेंगे दीपक निषाद। इसके अतिरिक्त आप जानते ही हैं, सुबह 6:30 पर आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनेंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीत लेकर आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 6:40 पर। 7:00 का वक्त सुबह सुबह का और 7:05 पर कृषि संकेत। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम 7:20 पर आप सुन सकते हैं। सुबह 7:45 पर संगीत सरिता सुनिएगा। 8:15 पर लोक संगीत होगा और 8:30 पर आप चित्रपट संगीत का आनंद लेंगे। 10:00 लेकर आएंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर चिट्ठी से लोकगीत और 10:30 पर ग्राम लक्ष्मी।

आपका व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

श्रोताओं, रात्रि 8 बजे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे। आज विषय रहेगा संस्कृति। शाम 6:15 पर संगीत सरिता सुनिएगा और सदाबहार गीत होंगे। शाम 6:30 पर 6:45 का वक्त रहेगा लोक रंग का। रात्रि 8:35 पर आप संगीत सरिता सुनेंगे और 9 बजे लेकर आएंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे होंगे और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिलाना चाहेंगे कि आज दोपहर 3:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान की 23वीं किस्त के हस्तांतरण के अवसर पर हुगली पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। समय एक बार फिर दोपहर 3:55। आज शाम 5:30 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्या से भेंट वार्ता। विषय रहेगा सतह से शिखर तक का योग का सफर। भेंट करता रहेंगे दीपक निषाद। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप इसकी 24वीं कड़ी सुनेंगे जिसमें मुख्य गायक स्वर है जगजीत सिंह और कविता कृष्णमूर्ति के।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी सागर है, 6:40 हुए हैं। ये वक्त है कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने का, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले ये गीत फिल्म आम्रपाली से, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अब सुनते हैं एक संदेश और उसके बाद अगला गीत पहुंचाएंगे आप तक।
1: नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्री
2: आई एम हियर।

0: से मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज करा अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: फिर सुबह होगी। अगला गीत इस फिल्म से है जिसको मुकेश और आशा भोसले ने गाया है। साहिर लुधियानवी के ये बोल हैं जिसे खय्याम ने

श्रोताओं, अभी आपने सुना मुकेश और आशा भोसले को। साहिर लुधियानवी के ये बोल थे जिसे संगीत से सजाया था खय्याम ने। ये गीत था फिल्म सुबह होगी। एक बार पुनः सुन ले, फिर सुबह होगी। अगला गीत आप तक पहुंचेगा, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश। इस रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत। सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11:00। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चित्रलेखा से ये गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। साहिर लुधियानवी के ये कलम का जादू है जिसे संगीत से सजाया है रोशन ने। आइए सुने फिल्म चित्रलेखा से ये गीत।

और चलते चलते आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म शबनम से ये गीत। ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर का कलाम, उषा खन्ना का संगीत,

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टीतमे जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारो ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य 150+500 नगरेषु, विदेशस्य च 14 नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीमपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279802877 इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रत्यपादीत् यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसंबंधाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतासु सत्सु अपि भारतामेरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानम् अस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रियहितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्य अंतर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां 400+2,000 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशिं वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति एएस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्यायं मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यंत्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्व कप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् 1-0 अंकांतरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान योर्मध्ये तृतीया अंतिमा च एक दिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एमए चितंबरम क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे 1:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। आपको इंतज़ार होगा कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में स्वीकार कीजिए साहिबा का नमस्कार। श्रोताओं, विचार और क्रिया दो तत्व हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। छोटे से काम से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक मनुष्य के विचार और आचार में समन्वय बहुत ही आवश्यक है और लक्ष्य प्राप्ति तभी संभव भी है। विचार के अभाव में क्रिया एकांगी और अधूरी है, उससे कोई प्रयोजन नहीं सजता है। इसी तरह बिना आचार क्रिया के विचार भी व्यर्थ ही हैं, उससे भी कुछ सिद्ध नहीं हो पाता है। हाँ, इन दोनों के ठीक ठीक समन्वय पर ही सफलता और उन्नति संभव है। गौरतलब बात यह है कि जहां केवल विचार है या केवल क्रिया ही है अथवा दोनों का ही अभाव है, वो व्यक्ति समाज या राष्ट्र को उन्नति देने में किसी भी प्रकार से सहायक हो सकता है क्या? ये विचारणीय प्रश्न है। कभी कभी देखा गया है कि जिनके पास क्रिया की शक्ति तो बहुत है, वो काम करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई उत्कृष्ट विचार ही नहीं है कि किस दिशा में काम करना है। इसी तरह जिनके पास उत्कृष्ट विचार हैं, वो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनके पास क्रिया का अभाव है, इसलिए भी कुछ लाभ नहीं हो पाता। ना स्वयं उनको कोई लाभ होता है, ना ही समाज को उनके इन अच्छे विचारों से कुछ मिल पाता है। कई बार देखा गया है कि विचार बहुत अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन वो विचार दूसरों के लिए दिए जा रहे होते हैं और उन विचारों से बिल्कुल अलग हटके हम कार्य कर रहे होते हैं। स्वयं उन विचारों का, उन अच्छे विचारों का हम पालन ही नहीं कर रहे होते हैं। और ये बात जब सामने आती है तो हम देखते हैं कि हमारे उन अच्छे विचारों का किसी के जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसे नकार दिया है, क्योंकि हमने खुद भी उसे अपनाया नहीं था। जो विचार जीवन में ही नहीं उतरता, व्यवहार और क्रिया के क्षेत्र में व्यक्त ही नहीं होता, तो उससे कोई प्रयोजन सिद्ध भी नहीं हो पाता। किसी भी विषय पर खूब बोलने, खूब सुंदर व्याख्या करने से विद्वता प्रकट हो सकती है, प्रशंसा भी हो सकती है, उपस्थित लोग वाह वाह भी कर सकते हैं, किंतु वो वक्ता के जीवन में उतरेगा ही नहीं तो समाज में बताइए उससे कैसे परिवर्तन आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो सोचें वो अच्छा हो, हम जो सपने देखें वो सुखद हों। और सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि हमें विचार ये भी करना है कि उनको पूरा करने के लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास किए जा सकते हैं, हम उसका मंथन करें, उस दिशा में कार्य करें। यदि ऐसा होने लगे तो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में महान सुधार बहुत सहज हो जाएगा। बात याद रखने की यही है कि विचार केवल विचार रह जाएं तो वो किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। जो विचार हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये विचार बहुत अच्छे हैं, उनका स्वयं भी पालन करना होगा, क्योंकि सिर्फ मुंह से अच्छी बातें बोल देने से हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, और कभी ना कभी जो भाव हमारे अंदर हैं वो हमारे मुख से निकल जाते हैं, और तब उन उत्कृष्ट विचारों का कोई मोल नहीं रह जाता जो हम दूसरों के जीवन में बांट रहे हैं। अगर हम उन अच्छे विचारों का खुद पालन करेंगे तो हमारे जीवन के आदर्श ही बदल जाएंगे और हमारे जीवन में आनंद भी आ जाएगा। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों के साथ। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है कृषि चर्चा पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि संकेत का। प्राकृतिक खेती से लाभ, इस विषय पर केंद्रित है आज का कृषि संकेत का ये अंक, और हमारे विशेषज्ञ हैं मयंक मेहरा।
2: और निश्चित रूप से वर्तमान समय जो चल रहा है, किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखने वाली आवश्यकता है, और ये बहुत जरूरी है कि केमिकल से मृदा की जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा अनाज उगना बंद हो जाएगा। इसी तारतम्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ भी किसान भाई जा सकते हैं। ये थोड़ा सा है कि उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन यदि आपको अधिक समय तक मिट्टी की दशा सुधारना है और आप सोच रहे हैं कि मिट्टी बहुत अधिक समय तक आपकी अच्छी बनी रहे, इसके लिए आपको अपनाना पड़ेगा प्राकृतिक खेती जैविक खेती। अब प्राकृतिक खेती जैविक खेती क्या है, मैं संक्षिप्त में इस चीज़ को लूँगा। प्राकृतिक खेती का सीधा सीधा मतलब है कि प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको उनका ही प्रयोग करना है आपकी मिट्टी में। अब उनसे आप कोई भी अलग अलग विधि से कोई कोई भी चीज बना सकते हैं, जैसे बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, आपका नीमास्त्र हो गया, अग्नियास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, दसपर्णी अर्क हो गया, ये तमाम चीजें हैं। और इन चीजों को आप अपने घर पे निश्चित रूप से बना सकते हैं, लागत बहुत कम आती है ना के बराबर। और आपके पास जो प्रकृति से प्राप्त चीजें हैं, जैसे नीम की पत्ती हो गई, आपके यहाँ गौमूत्र हो गया, आपका गोबर हो गया, मटर हो गया, बेसन हो गया, गुड़ हो गया, ये तमाम चीजें जो आपके यहाँ नजदीक में आसानी से उपलब्ध होती हैं, बरगद के नीचे की मिट्टी हो गई, इन चीजों का प्रयोग करके ही आप मिट्टी की दशा सुधार सकते हैं। बीजामृत हो गया, बीज उपचार करते हैं, जीवामृत को आप मिट्टी में डाल सकते हैं और पेड़ पौधों भी डाल सकते हैं, चाहे फसल आपकी सब्जी वाली हो या कोई दलहनी या तिलहनी या कोई अन्य फसल है। इसके अलावा मैं आप बात करूँ जैविक खेती, तो जैविक खेती में लाभदायक जो बैक्टीरिया जो मिट्टी में रहते हैं, जो वर्तमान समय में केमिकल दवा डालने से वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, उसका असर ये है कि यदि ये ऐसी दशा रही तो यदि कोई मक्के का डंठल आपके खेत में पड़ा है और ऑर्गेनिक परसेंट कम हो रहा है, इसका मतलब है डंठल यदि आप 2 से 4 साल बाद भी देखेंगे तो वो आपको बैज्यों को तो मिलेगा। तो इसलिए बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैविक खेती में लाभदायक जीवाणु जो है, जो मिट्टी में लाभदायक हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं, उसमें आप जैविक खेती के बहुत तरीके हैं, प्राकृतिक खेती के तरीके हैं। इन चीज़ों के कृषि विज्ञान केंद्र सागर में भी, हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी जैविक खेती से संबंधित स्यूडोमोनास हो गया, बेबीडियोवेसियन हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, पीएसबी हो गया, तमाम प्रकार के हमारे यहाँ जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र सागर में उपलब्ध होते हैं, और निश्चित रूप से इनका प्रयोग करना आवश्यक है। और इससे भी बेस्ट है कि आप प्राकृतिक खेती कि थोड़ा बहुत जगह में, जो 5 एकड़ आपकी जगह है तो लगभग आधे एकड़ में आप निश्चित रूप से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करें। उत्पादन थोड़ा सा यदि आपको लगेगा कि कम होगा, लेकिन आपकी मिट्टी की बनावट और मिट्टी की दशा निश्चित रूप से इससे सुधरेगी, और लागत भी आपकी कम होगी, क्योंकि यदि आप लागत कम करेंगे तो जो मुनाफा रहेगा उसका परसेंट आपके पास ज़्यादा होगा। तो निश्चित रूप से आप प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी कुछ हद तक अपनी मिट्टी में हमेशा के लिए उपयोग करते रहें, जिससे लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, रोग कीट कम लगेंगे, मृदा की बनावट अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, मृदा की संरचना अच्छी होगी, जनधारण क्षमता में वृद्धि होगी, और अंत में निश्चित रूप से इसमें फसलों का उत्पादन भी किसान भाइयों को बढ़ेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, विषय था प्राकृतिक खेती के लाभ। विशेषज्ञ थे मयंक मेहरा। FM बैंड पर ये आकाशवाणी साकर है।

श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्य से भेंट वार्ता, सतह से शिखर तक योग का सफर। भेंट करते रहेंगे दीपक निशाल। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा। आइए इंतजार करें बस थोड़ी सी देर।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के

0: रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा

शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

जी आकाशवाणी सागर है, 7:20 हो चुके हैं। आपको इंतजार होगा मन चाहे गीत कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार श्रोताओं। पहला गीत फिल्म दीवाना से कुमार सानू और साधना सरगम का गाया हुआ, समीर का लिखा हुआ, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ, आप तमाम श्रोताओं के अनुरोध पर आप तक पहुँच रहा है। ये हैं लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज जहां, दादा बाबू गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत सादिया, छत्रपति संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विराज, अंशुमन, बेबी ओवी, मारहारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, वशीद रशीद, सुहेल नवेद, शहनवाज, अनम, मुबीन अब्बासी, यशफ अब्बासी, ये पानीपत से अनुरोध है, जग्गी दुआ, कुलदीप शर्मा, सोनिया, सुधीर कुमार शर्मा, जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और हर्ष आहूजा का, आप सबकी पसंद का ये गीत।

और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म सड़क से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज, एक बार फिर समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, अनुरोध आप सबका। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, जमशेदपुर झारखंड, सोपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश निशा, रेशमा, दीपाली और देवेन, सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमारे श्रोता रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सारे लोग, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दिल तो पागल है, जी हाँ, ये फिल्म का नाम है, जिससे अगला गीत अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गीत को गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, उत्तम सिंह का संगीत है इस गीत के लिए, जिसे सुनने का अनुरोध हम तक पहुंचाया शाहजी नगर नादेड महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या, सविता भाकरे, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास बागवानी, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और समस्त विश्वकर्मा परिवार, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन, तालुका शेवगांव मुंगी पैठण महाराष्ट्र से बाबा साहब कंगनकर, साखरबाई कंगनकर, परमेश्वर रोहनी, श्रावणी ईश्वरी कंगनकर, गाड़केनगर यवतमाल महाराष्ट्र से आप हैं लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवार के तमाम लोग। आइए सुने इनकी पसंद का ये गाना।

भी श्रोता दिल तो पागल है फिल्म से ये गीत सुन रहे थे। आपके अनुरोध पर जी हाँ कुछ और गीत पहुंचाएंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त है इन संदेशों का। इस रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत। इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए। सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11:00। और आइए अब सुनते हैं फिल्म अंदाज से ये गाना जिसे कुमार सानू ने आवाज दी है। समीर के ये बोल हैं और नदीम शर्मन का संगीत है इस गीत के लिए जिसे हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं। ये हैं मालोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल और विवान मिगलानी, कंवर कॉलोनी बढ़वा जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और दर्श राजपूत, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी और सूरज ठाकुर, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, बिलईगढ़ छत्तीसगढ़ से अनुरोध करता है, कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता, डिंपल, कुमारी, भाव्या और प्रियांश, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु और रोनिका यादव, साथ में रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। आप सबकी पसंद का ये गीत पहुँच रहा है आप तक।

0: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर।
1: और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश के रूप में ये गीत आ रहा है आप तक। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण ने गाया गीत को, समीर ने लिखा और नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया। आपने सुनना चाहा। ग्राम पहारा, जिला दुर्ग से पोषण बंछौर चंद्र किरण, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रगेश सिंघई और प्रतेश सिंघई, साथ में हमारे ये श्रोता भी अनुरोध कर रहे हैं, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से, विनोद खट से, रोहतक हरियाणा से मानसी ललित और आशु, धांडी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य, सल्लार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन, डाडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा और परिवारजन, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, शौर्या श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश। यह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

अभी श्रोता मन चाहे गीत कार्यक्रम में अपने पसंदीदा नगमे सुन रहे थे। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं श्रोताओं, ये समय संगीत सरिता का है। इसमें आपके लिए कुछ गजलें और कव्वाली लेकर आए हैं। सबसे पहले सतीश बब्बर की आवाज़ में ये गजल, इनायत कम, मोहब्बत कम, वफा कम, मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11 बजे।
2: नूरजहां, ये एक ऐसा नाम है जिनको गीत गायकी में तो खूब पहचाना ही गया है, लेकिन उनकी गजल गायकी का हुनर भी सबसे हटके है। तो क्यों ना प्रोग्राम के आखिर में सुने उन्हीं की आवाज में ये बेहतरीन गजल।

अभी श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम में कुछ गजलें और कव्वाली सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आइए थोड़ी सी देर इंतजार करते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं।

21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
7: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
6: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
6: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने

0: वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई।

सबरी घर बार से, हाँ सबरी घर बार से, बेदोरे घर बार से, कुबजा घर बार से, अरे कुबजा घर बार से।

गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे, गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे, हाँ गण का घर बरसे सुदामा घर बरसे।

इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय तन मन चकाए बात बन जाए।

0: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर।
1: और अब सुनते हैं हेमराज पटेल से ये लोकगीत।

अभी श्रोता लोक संगीत कार्यक्रम में कुछ लोक भजन और लोकगीत सुन रहे थे। अब बुंदेली लोकगीतों और लोक भजन का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है चित्रपट संगीत का। फिल्म जगत में ऐसी बहुत सारी गायिकाएं हैं जिनकी आवाज अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन मिठास वही है। सबसे पहला जो गीत है उसे हेमलता ने आवाज दी है। उनका साथ दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। ये गीत है फिल्म अखियों के झरोकों से।

एक और गायिका जिनकी आवाज एकदम अलग हटके थी, लेकिन उनके गीत ऐसे रहे जो दिल की गहराई तक उतरते चले गए। हम बात कर रहे हैं गायिका शारदा की। आइए उन्हीं की आवाज में फिल्म सूरज से ये गाना सुनते हैं, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया है।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: एक ऐसी गायिका जो अगर बात करती थी या बोलती थी तो लगता था कि वो गा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। अब उन्हीं की आवाज़ में है अगला गाना, जो है फिल्म जीने की राह से। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया।

जब भी लता जी का नाम आता है तो आशा जी का नाम भी साथ साथ खुद ब खुद चला आता है। जी हाँ, उन्हीं की आवाज़ में अगला गाना हम सुनेंगे जिसे SH बिहारी ने लिखा, OP नैयर ने संगीत तैयार किया और ये गीत आपके लिए लेकर आए फिल्म सावन की घटा से।

0: एक और आवाज जिन्होंने गीत कम गाए लेकिन जो गाए वो बहुत खूब गाए, मुबारक बेगम की हम बात कर रहे हैं और उन्हीं की आवाज में ये गीत आप तक पहुंच रहा है। उनका साथ मोहम्मद रफ़ी ने दिया है। फिल्म हमराही से ये गाना है। हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा, शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया।
1: मुझको

यहाँ हम एक आवाज़ का और जिक्र करना चाहेंगे, जी हाँ, मीनू पुरुषोत्तम। उनकी गायकी का भी एक अलग ही मज़ा था, अंदाज था। आइए उनको सुनते हैं आशा भोसले के साथ। FH बिहारी ने गीत लिखा, OP नैयर ने संगीत बद किया। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

जब गायिकाओं की बात हो और उसमें सुमन कल्याणपुर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए अगला गीत सुने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, उनका साथ मोहम्मद रफ़ी ने दिया है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत है इस गीत के लिए, और ये गीत है फिल्म अनजाना से। यह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, उसके बाद हमें चलना होगा।

अभी श्रोता चित्रपट संगीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

0: रांची से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

वासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमती और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रचे और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए, गृह प्रवेश।

आविष्कार और गृह प्रवेश ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

0: 20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।
1: लड़कपन खेल में खोया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: 20 जून को है विश्व योग दिवस और इस बार की थीम है बढ़ती उम्र के साथ योग। विविध भारती लेकर आ रहा है एक विशेष कार्यक्रम। हमारे खास मेहमान हैं योगीराज भारत भूषण भारतेंदु, जो आपको बताएंगे कैसे योग बदल सकता है आपका जीवन।
1: बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए। पहला तो है श्वास से रिलेटेड, श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस वाले हैं तो उनके लिए 10
2: वाचन स्वर नवनीत चौबे की।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी, आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नास का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहाँ तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी सागर है। 10:05 हुए हैं, ये वक्त है चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

चिट्ठी से लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आप सबकी अपनी बहन रामकुमारी ठाकुर की राम राम पहुंचे। भैया आप सभी जने बाठी में बैठे हुई हो अपनी पसंद के चिट्ठी से लोकगीत सुनबे के लाने, तो ले हम सबसे पहले आप सभी जनों को सुनवा रहे हैं ललित मोहन को गाव भाव जो लोकगीत। एक हो सुनबे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है छतरपुर कट्टू पहाड़िया के पास छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, जसोदा भगवती भाभी, उमा देवी, ममता देवी, रामकली, सावित्री, अंशिका, मोहनी, गोलू, नीरज और समस्त छतरपुर निवासियों ने एक और सुनबे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है पुरब्याऊ काली तिगड्डा से श्याम रेकवार, विक्रम, बादल, विनय, लक्ष्मी, खुशबू, वंदना, विराज, दक्ष, टक्कू, कीर्तिका और भूमिका रेकवार ने। तो सुना थे इन सभी की पसंद पे ललित मोहन को गाओ भजो लोकगीत।

0: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर।
1: और अब अगलो लोकगीत आप सभी जनों को लेके आए हैं, मुस्तफा खान को गाओ भाव। एको सुनबे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है, कलेक्टेड कॉलोनी रायसेन मध्य प्रदेश से योगेश्वर से भारतीय, भैरव प्रताप से भारतीय, लोकेंद्र प्रताप से, प्रेमबाई, गोपाल, कृष्णा भारतीय और ललिता भारतीय ने, बाया तहसील रहटी जिला सीहोर से अमर से भारतीय, डॉक्टर सिखावत से भारतीय, सचिन भारतीय, महेंद्र भारतीय, कोसा भाई भारतीय ने। तो सुना थे इन सवई की पसंद पे मुस्तफा खान को गाओ भाव जो लोकगीत।

इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय तन मन जगाए बात बन जाए।

गोलू, नीरज, करिश्मा, रविशंकर, विभीषण, भविष्य नामदेव, पूनम नामदेव, दयाशंकर नामदेव, कमलेश दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और उनके समस्त रामटोरिया निवासियों ने एक हो सुन बे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है। बस स्टैंड गौरझामर से कुंदनलाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद चौरसिया, विवेक कुमार चौरसिया, बीरेंद्र कुमार, देवव्रत, काजल, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज चौरसिया, मानस चौरसिया और इनके सभी संगवारों ने। तो सुनते हैं अपन सुशीला देवी को गाभा जो बिरह गीत।

0: सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11 बजे।
1: और अब अगलो लोकगीत लेके आए हैं चुन्नीलाल रैकवार को गाँव भाव। एको सुनबे हमें चिट्ठिया लिख भेजी है मोकलपुर से पप्पू बड़े पहाड़ सिंह घूमन सिंह गोविंद सिंह साहब सिंह राजेंद्र डॉक्टर पप्पू जैन राहुल जैन और समस्त दोस्त गणों ने। एको सुनबे म्यांमार के ढाना सागर से रामगोपाल यादव भगवान दास नामदेव ग्रीस ओम गौरी गुड्डू चौराहा सतीश चौरसिया दिनेश रम्मू शिवाय मोनू हर्ष लक्ष्य राजकुमार अर्पित नामदेव विजय नन्ने भाई प्रमोद सेन विठल ठाकुर भीकम से मंगललाल नामदेव मेलवारा से अशोक चौरसिया ने। तो सुनत हैं सबई की पसंद पे चुन्नीलाल रैकवार को।

0: इस रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिव राम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत।
1: और अब अगलो लोकगीत आप सभी जनों को सुनवा रहे हैं केशव सुलेरी को गाँव भाव एक हो सुन भी हमें चिट्ठिया लिख भेजी है बेलाई जिला दमोह से मुन्ना कुड़ारी ने। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, विवेक, शिवा, शिवांशु, अवधेश, यश, प्रेम, रमेश कठोदिया, पंडित रमाकांत दुबे और प्रमोद सैनी ने। तो सुनाते हैं सभी की पसंद पे केशव सुलेरी को।

चिट्ठी से लोकगीत, अभी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को आप सबकी बहन रामकुमारी ठाकुर की राम राम पहुंचे। बहनों आप सभी जने एक सप्ताह तक इंतजार करत हो कि शनिवार को दिन आए और हमारी बहनें आके कछु ने कछु जानकारी जागरूकता से भरी भई जरूर दें। तो आज के कार्यक्रम में बहनों अपन चर्चा कर भी विश्व योग दिवस पे स्कूल चले हम रसोई की सफाई और भोजन में स्वच्छता और एक संगे बहनों मच्छरों से बचाओ।

इन पे अपन चर्चा कर भी कैसे अब इन सबई को समय चल रहा है। तो बहनों अब समय आ गया है, स्कूल चालू हो गए हैं और सभी बाल बच्चा कहन लगे हैं कि स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सो अपन को सोई अपने बाल बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ावे के लाने, उनकी हर तरह की तैयारी रुचि लेके खुशी से करने हैं, जिमें वे कोनो भी प्रकार से पीछे न हट पावे, उदास न हो पावे। कैसे बच्चा छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं, कक्षा में जावे में हिचकिचान लगते हैं, शिक्षक गुरु को सामना करवे में डराते हैं, फलस्वरूप बच्चा पढ़ाई होमवर्क में पीछे होने लगते हैं। सो बहनों ऐसो न हो पावे तो जा अपनी एक अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, सो एको निर्वाहन ठीक से करो चाहिए। उनके बैग की तैयारी, पुस्तकें, कॉपी, पेन, पेंसिल, बॉटल, ड्रेस, सभी चीजें कंप्लीट भाव चाहिए। दूसरी बात बहनों, उनको हमें समय पे स्कूल भेजबो जरूरी है। कैसे कक्षा में पहुंच भी से देर से अगर भी कक्षा में पहुंचत हैं तो ऐसे बच्चा नर्वस हो जाते हैं, एको की पढ़ाई और मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ते हैं। सो बच्चों से ज्यादा मेहनत और ध्यान अपन को रखने पड़ते हैं। कैसे बहनों, बच्चा तो बच्चा है, सो रहे हैं, नींद लगी है, हमें पहले उठने हैं और उनको जगाने हैं, उनकी तैयारी करने हैं। सो कहवे को मतलब जो ही है बहनों कि आप अपने बच्चा की स्कूल पढ़ाई और जरूरतों को पूरा ध्यान रखें और नियमित शाला में भेजें, उज्जवल नियमित रूप से उनको शाला में भेजें, उनकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं की संगे। तो बहनों जौन भी बच्चा अपने स्कूल जावे बारे हैं, उनके नाम दर्ज कराने हैं, स्कूल भेजबो शुरू करें और उनकी सभी तैयारियों के संगे और उनके खुशहाल भविष्य की कामना करें। एक ही संगे बहनों, बारिश में जो है रसोई और भोजन की स्वच्छता को विशेष ध्यान देने पड़ते हैं। तो बहनों जा चर्चा अपन बाद में करें, पहले सुन लें जो लोकगीत, एक गा रही है राधा खरी।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
1: और दूसरा
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: और बहनों अब ये लोकगीत के बाद अपन आते हैं अपनी चर्चा पे। तो देखो बहनों, बारिश को मौसम शुरू हो गया है, मन भावन फुहारें पड़न लगी हैं। ऐसी समय अपनी भोजनशाला यानी रसोई की देखभाल बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारी बहनें बहुत अच्छे से जाबात जानती भी हैं, जैसे ही सीढ़न आत है तो अपन को खुद ही अपनी रसोई में अच्छो नहीं लगे। कैसे बरसात की नमी से रसोई में फफूंद वायरस बैक्टीरिया पनपन लगते हैं, जिससे भोजन और खाद्य सामग्री के खराब होवे को खतरा बढ़ जाता है। सो नमी और चीज़ों को खराब होवे से अगर अपन को बचाने हैं तो एक लाने रसोई की नियमित अच्छी सफाई करवो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। संगे रसोई जो है वह सूखी रखनी चाहिए। खाद्य सामग्री मसाले को अपन एयरटाइट डिब्बों में ढक्कन पे पॉलीथिन पेपर लगा के टाइट करके रखें, जिमें नमीयुक्त हवा जो है ओमें प्रवेश नहीं कर पाए और अपनी चीज़ें खराब भी नहीं हुई हैं। अगर अपन ऐसो नहीं कराता है तो उनमें जा नमी चली जाए और अपनी चीज़ें जो उनमें खराब हो जाए, उनको खराब होवे से कोई नहीं बचा सके। और चीज़ें खराब होवे में बहनों बरसात में देर ही नहीं लगे। सो रसोई की सफाई को अपन को विशेष ध्यान रखने, जिमें चीज़ों को खराब होवे से नुकसान होवे से बचाव जा सके और खाद्य सामग्री को सुरक्षित भी रखो जा सके। ऐसे ही बहनों भोजन की स्वच्छता पे भोजन और रसोई को बड़ो गहरो संबंध है। तो भोजन की स्वच्छता को भी विशेष ध्यान देना है। भोजन बिल्कुल साफ स्वच्छ तरीका से पकाओ, भोजन को हमेशा ढक के रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं बहनों, उनको ध्यान आप और रखते भी हो, मानो हम तो खबर करा देते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उनको बढ़िया सफाई से अच्छे तरीका से साफ करके पकाएं और भोजन को हमेशा ढक के रखें। कैसे ये समय बहनों आप भी देख रही हुई हो, कीड़ों को प्रकोप बढ़ जाते हैं और जे कीड़ा हानिकारक रहते हैं। संगे ताजो गरम भोजन करें। अक्सर बहनें सोचती हैं अबे नहीं थोड़ी देर से कर लें, अब जो काम कर लें फिर कर लें। बहनों ऐसो नहीं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सी हैं तो आपको समय से और ताजो भोजन करवो जरूरी है। वही के संगे बहनों सबको ताजो भोजन कराने भी है। एक ही संगे वृद्ध जने जो हैं बहनों उनको ध्यान रखने कि रात में उनको हल्को फुल्को दलिया खिचड़ी ऐसी चीज़ें अपन को देने हैं ताकि कोनो भी समस्या से बचो जा सके। भोजन में संपूर्ण पौष्टिक संतुलित आहार भाव चाहिए। पौष्टिकता से मतलब बहनों जो है कि सभी प्रकार की चीज़ें हैं, दाल है, चावल है, सब्जी, पापड़, अचार, मौसमी फल, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें अपनी भोजन की थाली में शामिल भाव चाहिए। बहनों ये समय तो दो ही बातों को विशेष ध्यान रखवो जरूरी है। और जब हम ध्यान रखें तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। तो अपन को इन बातों को, रसोई की सफाई को और भोजन की स्वच्छता को, पौष्टिकता को पूरा ध्यान रखना है और पूरे परिवार के संगे स्वयं स्वस्थ रहत भाई बहनों खुशहाल जीवन जीने हैं। तो ये बात को बहनों विशेष ध्यान अपन को रखने हैं। और अब लियो बहनों आपको मनोरंजन करवाते हैं, जो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो गा रहे हैं नरेंद्र प्रताप से तोमर।

अभी अपन सुन रहे थे नरेंद्र प्रताप सिंह तोमर को गांव भाषा लोकगीत। और बहनों, अब अगली चर्चा हम कर भी जा रहे हैं, भाभी आप सभी के हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ी भई है। विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि कल 21 जून को मनाया जाता है। तो देखो बहनों, हम सभी जनों को सभी तरफ से जानकार जागरूक बनाओ चाहते हैं कि हमारी बहनें भी हर तरीका से जागरूक रहे, ऐसो न रहे कि कोनो बात से अनजानी रहे या भी ओखो समझे न। इसे सभी जानकारी दिन दिवस सप्ताह की आप औरों के संगे हमारे साझा करते हैं। सो आवे बारी 21 जून को यानी कि कल विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में बड़े हर्ष और उल्लास के संगे मनाया जाते हैं। कहते बहनों के उत्तरी गोलार्ध में ये दिन साल को सबसे लंबो दिन होता है। 21 जून को सूरज की किरणें ज्यादा समय तक धरती पे पड़ती हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो ऊर्जा और सकारात्मकता को प्रतीक मानो जाते हैं, इसे आज के दिनांक को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ही संगे बहनों, सामान्य तौर से देखें तो आप सभी जानती समझती हो कि योग के अनेकानेक लाभ हैं। हमारी बहनें मोबाइल, टीवी या शिविरों में प्रशिक्षण लेके भी अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योग करती हैं। कैसे योग को बहनों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अनूठो संगम है। योग क्रिया अभ्यास करवे से अपन को एक संगे अनेकों लाभ होते हैं बहनों। नियमित अभ्यास से शरीर में लचीलोपन आते है, शरीर हमारा जो है वो ताकतवर हो जाते है, शरीर में रक्त संचार बढ़त है, हर अंग तक रक्त पहुंचत है। तनाव जोन के वर्तमान की प्रमुख समस्या है, जोन को देखो वो तनावग्रस्त रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, इसे मुक्ति मिलत है, चिंता कम होत है, अपनों जो दिल है, हृदय है जो भी स्वस्थ होत है। कैसे जब पूरे शरीर में रक्त संचार बराबर होते तो हृदय स्वस्थ होते, संगे शरीर और मांसपेशियां सभी मजबूत होते। और बहनों, अपनी दैनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से भी बचा होते, जैसे गैस है, कब्ज है, सिर दर्द है, इन चीजों से थकान है, इन जे सभी चीजें बहनों योग अभ्यास करवे से छू मंतर हो जाती हैं।

आप औरों ने सुनी भी हुई है बहनों कि योग भगाए रोग, योग से आरोग्य। एको मतलब है ये बहनों कि योग करवे से हमारी काया जो है, हमारा शरीर है, निरोगी हो जाते हैं, रोग हमारे शरीर से दूर भग जाते हैं। योग इतनो ज़्यादा लाभकारी है बहनों कि हम योग के द्वारा ऐसी कई समस्याएं हैं, कई बीमारी हैं जिनसे निजात ले सकते हैं और एक मोटी रकम पैसा अपनो बचा सकते हैं। तो बहनों अपन सभी जनों को योग की तरफ पे ध्यान देने हैं। और आजकल तो टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आप घर ही बैठे भी प्रशिक्षित हो सकते हो। सो बहनों आगामी योग दिवस की आप सभी जनों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और योग दिवस पे आप सभी जनी संकल्प लो, हम जानते हैं कि हमारी बहनें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, घर के कामकाज जो है चैन की तरह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जो उनके कबों खत्म नहीं हो गए, पर उनमें से भी अपन को थोड़ा सो समय निकालने हैं, अपने लाने, स्वयं की लाने। कैसे हमारी बहनें जो है परिवार की धुरी कहलाते हैं, परिवार की धुरी। और परिवार की धुरी जो है वह मजबूत भाव चाहिए, तभी तो सभी जनों को ध्यान हमारी बहनें रख पाए। तो ऐसे अपन को कछु समय निकाल के योग अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जरूर करने हैं और बीमारियों से बचाव करके स्वस्थ जीवन जीने हैं। तो बहनों जातो हती चर्चा अपनी विश्व स्वास्थ्य, क्षमा करें, विश्व योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब सुनते हैं जो लोकगीत।

आजाद रावत को गाँव लोकगीत अभय अपन सुन रहे थे। और बहनों देखो, बच्चों को स्कूल भेजें, रसोई साफ और स्वच्छ रखें, भोजन में पौष्टिकता को ध्यान रखें, योग करें और स्वस्थ रहें। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के संगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी से आज्ञा दो, राम राम।

अभी श्रोता ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अनुप्रसारण होगा मुंबई केंद्र से। आइए थोड़ी सी देर इंतजार करते हैं।

छू कर मेरे मन को, याराना फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है
1: समय? थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी
0: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ,
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? रामरी, शीतली
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके अपने फेफड़े
0: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
1: कपालभाती,
0: सबसे पहले कपालभाती जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे कर रहे हैं।
1: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी।
1: ये
0: जी, जी।
1: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
1: जी,
0: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
1: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
0: जी,
1: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
0: अच्छा,
1: जो दिन भर चलते हैं, पोल्यूशन है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
0: अच्छा,
1: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं
0: जी जी,
1: जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है
0: जी,
1: जिससे नाड़ियां सब बैलेंस रहती हैं।
0: जी।
1: और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तक जग भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है। तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: अच्छा।
1: जो हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाता है। जैसे इंजन में व्हील ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है
0: जी।
1: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
0: अब देखिए ना, हम रेडियो पर हैं
1: जी,
0: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है।
1: हाँ,
0: करके दिखा नहीं सकते,
1: दिखा नहीं सकते।
0: पर भ्रामरी प्राणायाम वही है ना, जिसमें उंगलियों हाँ, से आंखों
1: को बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
0: जी,
1: मुंह बंद रखना है
0: हाँ,
1: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
0: जी,
1: और मुंह बंद करके ही नाक से श्वास को छोड़ना है और हमिंग करना है, बटरफ्लाई की तरह।

0: और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता तो वहाँ से फिर वो श्री कृष्ण होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12, 25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी,
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग

0: प्लस है, जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपनी लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
1: अच्छा,
0: फिर दूसरे दिन 2 राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप 2 राउंड 3 राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगा धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
1: बढ़ाइए,
0: बढ़ाते जाइए।
1: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर किसी का कुछ
0: ये सही कर रहे हैं जी। तो जोश में आकर होश नहीं खोना है,
1: बिल्कुल।
0: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
1: जी,
0: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
1: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
0: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
1: काफी होता है,
0: काफी होता है।
1: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या है। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
0: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
1: जी।
0: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बोज सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
1: मिल जाता है जी।
0: ये सबसे
1: इम्पोर्टेंट बात है सूर्य नमस्कार, और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
0: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
1: जी,
0: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से।
1: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
0: उसके अनुसार
1: बाकायदा ईमानदारी से बताना है। हाँ, कि
0: जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
1: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
0: जी,
1: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
0: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
1: जी।
0: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
1: नियमित रूप से करते आए हैं,
0: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह को अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है
1: जी। मैं समझ गया
0: जी।
1: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
0: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याधि से व्याधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बहुत से चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले। कोई व्याधि से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो ना करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी।
1: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया है, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं, और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
1: जी,
0: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं, सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीजें होती जा रही हैं। तो उसमें हमने योग

वो पर्सनलाइज किया है, जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहिणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं, तो उनके लिए किचन योगा है। किसानों

0: कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया
0: जी,
1: अलग अलग लोगों के
0: हाँ,
1: लिए अलग अलग
0: सब सभी स्वस्थ रहे
1: तय कर लिया
0: जी।
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।
0: जी, जी।
1: विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है। बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति। और जब से कोरोना का समय आया
1: जी,
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह, अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी,
1: हैं
0: जी जी,
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाए पिए, कैसे जिए कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
0: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: और संभव नहीं है
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है
1: कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं,
0: हाँ, 5 साल में 2 साल में इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा
1: जी।
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं मेंटली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है
1: जी।
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती है। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर सकते
1: हैं, कॉलेज में हो, घर पे हो,
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन
1: जी।
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है
1: जी,
0: मस्तिष्क से ही
1: जी।
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीजों को आप ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है अब देखेंगे तो फिट ही रहते हैं।
1: जी,
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा जागरूक हैं और उनको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है
0: जी,
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं चाहे वो जूनियर कॉलेज को चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप स्क्रीन का जो जमाना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से, तो उसके लिए भी मोबाइल चर्य कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपनी लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वह है हमारी महिलाएं, उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियां हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, एक तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है, ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नजरअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है, और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है, तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं
1: तरह तरह के, मन भी कई बार अशांत रहता है,
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
1: और क्या महिलाएँ सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं
1: जी,
0: लेकिन ज्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती है 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती है।
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा,
0: हाँ, सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
1: जी,
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
1: जी,
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
1: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं।
0: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
1: हाँ।
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
1: हाँ।
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
1: जी।
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
1: जी,
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है। और
1: अब हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी।
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त।

0: किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे। अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स, इस फिल्म से ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं। मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है।

हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है, रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी खास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजे बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी

जहन में ताजा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था वो उन्हें याद आता है और गज़ल सुनना चाहते हैं। देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग न जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है उस पर ये गीत।

पानी लग। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है, उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियाँ हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और

इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियां, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम न रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आपने सुना काला पानी फिल्म का गीत शब्द रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत एस डी बर्मन का। आकाशवाणी

प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज हम और कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से। आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, और संगीत ओपी नैयर का।

0: लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य और समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। ये दिवस राज्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। आज के ही दिन इस बात की पुष्टि हुई थी कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस दिशा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अमूल्य भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
1: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है, उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है, मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय, बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ छिपरा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से समय से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकासखंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव,

0: मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तो

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरण जी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता

0: संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने

0: 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे में।

0: देखो उतर गए बिच्छुआ,
1: एक टूट के रह गए उठन से उतर गए बिच्छुआ।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमति फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलील चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400-09।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्या नगर केड़काव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है, इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और भैया झूठ मूठ। चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ।
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी,
0: हाँ?
1: तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुडू, बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ?
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो।
0: हाँ?
3: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग? नहीं तो, नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूँ?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी।
3: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कभी नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं।
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
4: ओह।

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, मा?
1: क्यों रे बेंट, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूं माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ।
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है। हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: और राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलेस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे छोड़ भी, पागल कहीं
2: वासी।
0: जीनी
1: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बेंच से इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा, होगी कोई।
2: हाँ?
0: पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में, यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
2: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। You are now a poet, and in time you will be a great poet, Bench.
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
2: हाँ?
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
2: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
2: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
2: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
2: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
2: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
2: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सुप, मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
2: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौक चौक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
2: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
2: अच्छा, मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
3: लिखाई पढ़ाई हो गई?
2: अब हाँ मौसी हो गई।
3: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
2: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
3: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी
0: है,
1: गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चढ़ो।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
2: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
3: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
2: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
4: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
2: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
2: देखिए, आप इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिमी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
2: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
2: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
2: न जाने वो पूछो।
0: जिमी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बेंच कहाँ है, कैसा है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
2: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
2: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
2: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
2: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी है।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापालकर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उई सिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
2: कौन हो सकता है? कौन है?
0: अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
2: क्या हुआ? खून,
0: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
4: पुलिस ने? यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया। चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
4: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
4: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
5: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए।
0: देखो,
5: ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
5: अच्छा, आता हूं।
6: हैंड्स अप।
0: आप लोग
6: जरूर अंदर देखो, ये जल्दी क्विक, कहां है ये सब?
7: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
0: जी हाँ सर।
7: ये कौन है? सर, वो लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा?
0: जी, जेम्स पिस्से।
8: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
0: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
7: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहां गया?
0: यहां तो कोई भी नहीं आया सर।
7: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
8: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
0: मैं सच कह रहा हूं सर, यहां कोई नहीं है।
7: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूं। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
8: मिल गया सर।
7: क्या मिल गया?
8: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी हुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
7: यू आर राइट
8: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
7: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया?
0: जी,
7: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
0: नहीं, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
2: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
7: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
0: हाथ में
9: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
10: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
11: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया, द रिजॉल्व टू मेक द कंट्री अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, टू मेक द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट नेशन सेफ, सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Shri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed. India will be the India of our dreams and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
10: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4 लाख 28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
11: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests, and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and Gram Panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
10: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
11: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendra, as Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District, Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
10: बिल्कुल, तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.
1: क्लास में जब मैं एज अ टीचर मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूँ और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूँ, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है? तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द। अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो उसका अर्थ क्या निकलता? तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपनी लिखता था, समझता था। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही है बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें,
2: उस बच्चे को।
1: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
2: जी बिल्कुल सही।
1: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं। मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
2: बिल्कुल सही।
1: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूं कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है? अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होते हैं, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा। तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती है, करतब दिखती है, लेकिन डांस में कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
2: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
1: हाँ,
2: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
1: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं। उनका बेंचमार्क कितना सेट किया ना
2: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है
1: हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं, जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है।
2: अच्छा
1: मनमोहिनी।
2: अच्छा मनमोहिनी।
1: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में। फिल्मों में क्या है, कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो
3: पहुंचने वाले हैं। सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है, क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है, जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था। और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
4: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन, एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
3: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
4: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise. We see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
3: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
4: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। एंड आई वांट टू से दैट it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
3: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है। और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है, ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसा आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज दोनों दीदी की बात होती है तो किस तरीके से आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Sri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद.
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय. और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी जी.
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति.
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए. और बंगाल में माँ दुर्गा का शैली में बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है. और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को.
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई.
1: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government, the sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
2: और वैभव, उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है. और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित, और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं.
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम. भारत केसरी लौह प्रणाम. स्वामी प्रणवानंद लौह प्रणाम. सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदय अंतरेर आत्मीय, जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि. आमादेर मध्ये उपविष्ट आछेन एई राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आरएन रविजी एवं जनता जनार्दन. आजकेर एई ऐतिहासिक दिने एई तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्ये उपविष्ट हयेछेन, तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब. माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपति जीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेछेन, ताके कलकाता फिरते हबे. তিনি আজকে লোকভবনে থাকবেন, আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন. তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখ

0: आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is of course of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: Ji haan, Pradhan Mantri, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़

0: रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out, and there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev manch par virajman Rajpal RN Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjawan mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, anya sabhi mahanubhav और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना

किया था। बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए

मुस्लिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने

गई थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं,
कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है।

का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू हो गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में

0: आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम संगीत सरिता का, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गजल।

0: डॉक्टर हसरत जयपुरी का लिखा हुआ कलाम अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।

वसीम बरेलवी का लिखा हुआ कलाम अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी जगजीत सिंह की। इसी गजल के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेता

0: नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने, नए पुराने, इस कार्यक्रम का शेष भाग सुनिए। ये स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश के। फिल्म का नाम है कभी कभी। गीतकार साहिर लुधियानवी है, संगीतकार हैं खयाम।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें

0: जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है दो रास्ते। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते वो हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी और फिल्म का नाम था वास्तव। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज, फिल्म का नाम कभी हाँ कभी ना। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत जतिन ललित का है।

0: इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: गुलामी, इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: इस रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत। इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

मोहरा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं उदित नारायण और साधना सरगम की, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, इस गीत को संगीतबद्ध किया था विजू शाह ने। इस गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। इसमें सबसे पहले सुनिए रामप्रसाद अहिरवार से ये लोक भजन।

0: 21 रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत।
1: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब सुनिए इंद्रपाल विश्वकर्मा से ये हास्य गीत।

0: और कार्यक्रम के अंत में सुनिए माधव सिंह क्षत्रिय से ये लोकगीत।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

0: इस लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में

0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। अब से कुछ ही समय पश्चात आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा शाम के 7:10। खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसानवाणी सुनना ना भूलिएगा शाम 7:20 पर।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। विषय होगा संस्कृति। ये कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। संगीत सरिता आप सुनिएगा रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम रिले करेंगे रात्रि 8:45 पर। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा भेंट वार्ता, सतह से शिखर तक योग का सफर। योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्य से योग और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारे कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 6 बजे से। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुनिएगा प्रातः 6:05 पर। कस्टमाइज प्रायोजित योग गीत आप सुनिएगा सुबह 6:20 पर। श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ होगा प्रातः 6:30 पर। गायन स्वर होगा अनुराधा मराठी और श्रीकांत पारगांवकर का। भूले बिसरे गीत, यह कार्यक्रम होगा प्रातः 6:40 पर। कृषि संकेत आप सुनिएगा सुबह 7:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे सुबह 7:10 पर। मन चाहे गीत आप सुनिएगा प्रातः 7:20 पर। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। समय होगा सुबह के 7:30।

0: श्रोताओं, सुबह 9:30 पर सुनिएगा रेडियो पत्रिका गागर में सागर। फोन करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम होगा प्रातः 10:05 पर। इस कार्यक्रम के प्रथम भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए। प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। यह कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:00 से। सुबह 11:10 पर आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 11:40 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संबोधन का सीधा प्रसारण। युववाणी ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:02 से। प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं आप सुनिएगा 5:30 से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज

0: भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए, इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। यह मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
0: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। December 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
0: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मॉनसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मॉनसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, स्थिति, सिंगरौली, मैयर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: भैया किसान भैया और बिन्नाहरों को मनपसंद किसान वाणी कार्यक्रम लेके हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। तो आज ये कार्यक्रम से हम माने सतीश साहू
1: और हम नीरज सोनी
0: दो ही जने करत हैं आप सब जनों को
1: राम राम, राम।
0: और नीरज भैया जे इतने सारे कागदा लें हो तो बताओ तो के आज का कब सुनवा रहे हो।
1: सतीश भैया हमारे किसान भैया हरे हर रोज तैयार रहते हैं तरह तरह की जानकारी सुनवे।
0: बिल्कुल
1: सो ब जानकारी अपन हर रोज के कार्यक्रम में लेके आते हैं यही से जी कगदा बढ़ जात कहानी।
0: सही कह रहे नीरज भैया।
1: किसान भैया रो आज अपन अपने कार्यक्रम में खरीफ सीजन की जो बोनी है वो के सही समय पे चर्चा करने वाले हैं।
0: अच्छा
1: और एक ही संगे संगे सतीश भैया आज अपन

0: नंदन शकवार को गाओ भाई, बहुत ही प्यारो सो लोक भजन अपन सबई जने सुने।
1: बिल्कुल, और नीरज भैया आज एक खुशखबरी भी लेके आए हैं, वह खुशखबरी प्रधानमंत्री ने जो किसानों को सौगात दी है उसके बारे में भी अपन बताएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, और किसान भैया रो अपने कार्यक्रम में आखिर में जो है मंडी भाव और मौसम की जानकारी सुरहत ही कहानी।
1: बिल्कुल, तो नीरज भैया सबसे पहले भाई खुशखबरी अपन दें दे।
0: बिल्कुल दे,
1: जो हम अभी कह रहे थे आज अपने जो पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त है, तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खातों में एक ही राशि ट्रांसफर करी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एक के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई। तो सबसे पहले तो सभी किसान भैया बिन्नाहरों को बहुत बधाई दे थे, और उसके बाद जो आप कह रहे थे भैया कि अपन खरीफ मौसम में फसल बोवे को सही समय बता रहे बारे हैं, तो बताओ।
0: बिल्कुल भैया, हर मौसम में सही समय पे करी गई बोनी जो है फसल की अच्छी उत्पादन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते जा तो बात सभी जने मानत है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिलहाल खरीफ मौसम की जो बोनी है उको समय चल रहा है, तो ए मौसम की फसल बोनी को का समय भाव चाहिए, आज अपन ए विषय पे सतीश भैया चर्चा लेके आए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया हरो उनसे तो हर फसल की बुआई को अपनो एक विशेष समय रहते हैं नीरज भैया, मनो बोनी के मामले में एक बात सभी फसलों पे लागू होत है कि खरीफ की बुआई के पहले कम से कम 60-70 मिलीमीटर बारिश हो जाबो जरूरी।
0: बिल्कुल,
1: एक पहले बोनी करबे से बीज अपनो खराब हो जात है, यही से कही जात है कि माटी में 10 सेंटीमीटर माने 4 इंच नमी को होबो जरूरी रहते है जिससे बीज को अंकुरण अच्छे से हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कुल मिला के पहली अच्छी बारिश होबे के बाद ही बोनी शुरू करनी चाहिए।
0: बिल्कुल किसान भैया, रो खरीफ की बोनी के समय मौसम या ओके समय यानी वो समय को जो वातावरण है वो बहुत महत्व रखत।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसे हमें मानसून की स्थिति, नमी के स्तर और मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उनकी ताजी ताजी जानकारी लेते रहो चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और एक लाने किसान भैया रो IMD माने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की जो वेबसाइट है वो खुद देखत रहो चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कुल मिला के अगर कहें तो खरीफ की बोनी के लाने हमें मौसम पे लगातार जो है बनिगाह रखो चाहिए। और किसान भैया अपन सभी जने जाना थे कि अपन अपने कार्यक्रम में प्रतिदिन मौसम की ताजी ताजी जानकारी देते ही हैं।
1: बिल्कुल
0: भैया, ये मामले में विशेषज्ञों से भी सलाह अपन को लेते रहने, संगे ही संगे हमारे आसपास के जो अनुभवी किसान भैया रहे हैं, बुजुर्ग किसान भैया रहे हैं, उनसे भी परामर्श करके उनके अनुभवों को भी फायदा अपन को लेते रहने।
1: बिल्कुल नीरज भैया जा, बिल्कुल 100% आपने सही बात कही कि बुजुर्ग जो किसान हैं भैया उनकी उपेक्षा तो छोड़ दो, उनको पास बैठो, उनसे बात करो और उनके अनुभवों को फायदा लो। भैया अगर सामान्य तौर से सभी फसलों की बात करी जाए तो सभी फसलों की बोनी जून से लेकर जुलाई तक होत है, जब तक दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली बरसात शुरू हो जात है। बोनी को सही समय मानसून के आगमन के संगे ही फसल की किस्म पे भी निर्भर करत है। अगर हम फसलवार उनकी बोनी के सही समय की चर्चा करें तो समय पे बरसात और सही नमी उपलब्ध होवे पे नीरज भैया बताओ कि कौन सी फसल बोने है।
0: बिल्कुल किसान भैया, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है
1: जो आप अभी कह रहे थे कि अगर ऐसा होते तो सोयाबीन की फसल अपन को लाओ चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सतीश भैया, तो भैया हरो सोयाबीन के लाने आखिरी हफ्ता से लेके जुलाई के पहले सप्ताह तक को समय एकदम सही मानूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और अगर धान की बात करें नीरज भैया तो धान की बोनी के लाने मई और जून को समय नर्सरी के लाने और जून से जुलाई के बीच को समय रोपाई के लाने सबसे उचित मानो जाए।
0: बिल्कुल भैया हरो, अगर मक्का की बोनी को समय अपन एक ही विस्तृत चर्चा करें तो एक ही बोनी मई के आखिर से लेकर जुलाई तक हमारे किसान भैया ने कर सकते हैं,
1: माने एको समय बड़ो फैलो भाव है। मूंगफली की भी बात अगर नीरज भैया करें तो मूंगफली की फसल भी सागर क्षेत्र में एक बड़े रकबा में लगाई जाते है, एक ही बोनी के लाने जून के दूसरे हफ्ता से जुलाई को पहलो हफ्ता सर्वोत्तम मानो जाए।
0: बिल्कुल, दलहन में अगर किसान भैया रो मूंग उड़द अरहर की अपन बात करें तो फसल चक्र अपनावे के हिसाब से दलहन की फसलें बहुत ही अच्छी मानी जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और इसे सागर क्षेत्र में भी खरीफ में दलहन को रकबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, अच्छो खासो है।
1: बिल्कुल,
0: दलहन फसलों की बोनी के सटीक समय की अगर बात करें तो नमी की उपलब्धता के हिसाब से जून के आखिरी हफ्ता से जुलाई तक बहुत तई नोनो समय किसान भैया रो मानूंगा है।
1: बिल्कुल, तो नीरज भैया अपन अपने किसान भैया को बताएं कि ए हिसाब से अपनी कोशिश सही समय पे बोनी कर भी।

0: की रौ चाहिए। बोनी के पहले खेत की अच्छी तैयारी और बीजोपचार भी अपन को जरूर करो चाहिए। बिल्कुल।
1: और अब सतीश भैया जरूरी है कछु जी संदेश सुन ले, वो
0: सुनाते हैं।
2: सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11 बजे।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: इस रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय तन मन जगाए बात बन जाए।
1: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड करापुर जिला सागर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
6: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
7: किसान भैयारो, संदेशों से लौट के एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं आप सभी जनों को कार्यक्रम किसान वाणी में।
8: बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज भैया, अब जो विशेष दिवस की बात आप कर रहे थे कि आज के दिवस को सबको इंतजार रहे थे, अपन चर्चा कर रहे थे, माने क्रम आकाशवाणी गांव में तो जो अपन सुनवा रहे हैं, और इनमें ग्राम कुसुमगढ़ और भापेल के किसान वीरेंद्र सिंह, शुभम सिंह और पुष्पेंद्र सिंह से जो आपने बातचीत करी है, वह अपन सब सुनने वालों को सुनवाऊ थे के खरीफ की फसलों की कैसी तैयारी चल रही है कुसुमगढ़।
7: बिल्कुल सुनाते हैं भैया हरो।

0: किसान वाणी कार्यक्रम को आज को अपना साप्ताहिक क्रम है आकाशवाणी गांव में। भैयारो अपने इस साप्ताहिक क्रम में आप किसान भैयारों के किसानी पशुपालन बागवानी के जो अनुभव रहते हैं भी आपसे मिलके और चर्चा करके आपस में सभी जनों से बांटत कहानी। तो आज के अपने साप्ताहिक क्रम में हम सागर में ही ग्राम भापेल ग्राम कुसमगढ़ के किसान भैयारों से किसानी पशुपालन बागवानी की चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी किसान भैयारे बड़े उत्साहित हैं आकाशवाणी सागर से जुड़ के कार्यक्रम किसान वाणी के साप्ताहिक क्रम में अपने अनुभव साझा कर भी खुले के तमाम किसान भैयारों को हम अपने साप्ताहिक क्रम में स्वागत कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम अपने इन किसान श्रोता भैया से जो ग्राम भापेल से हैं। भैया आप अपना परिचय हम तक पहुंचा दूं।
1: वीरेंद्र सिंह ठाकुर भापेल।
0: वीरेंद्र भैया भापेल में का चल रहा हो? देखो बोनी की तैयारी हमें लग रहा है शुरू हो गई हुई है, तो जरा बताओ का कैसी तैयारी है, का बोनी में ले रहे हो?
1: तैयारी तो लगभग है, ये पर तो पानी की इंतजार है। बोनी ये सारा मक्का सोयाबीन सब ही रहे हैं।
0: अच्छा वीरेंद्र भैया जो फसलें आप बो रहे हो उनके बीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। बीज कहाँ से प्राप्त करत हो, खुदाई को बीज उपयोग कर रहे हो या कहूँ से लेट हो, थोड़ी सी बताओ।
1: हाँ जो न अपने फसल कटवात है वो समय सूखी में कट गई, थ्रेसर से गहाई हो गई भी तो अपने घर के भी बना ली।
0: हाँ
1: नहीं तो खरीदने पड़ा थे तो परमार कौन अच्छी दुकान है जहाँ उनके से ज्यादातर खरीदे थे।
0: अच्छा तो बीज प्रमाणित हो अच्छी गुणवत्ता को हो इकलाने कौन कौन बातों को आप अपनी तरफ से ध्यान रखा थे जरा जाओ और बताओ।
1: सूख हो और खेबड़ा न हो एक माने क्वालिटी हो मुख्य चीजें तो यही है। उमे जर्मिनेशन को भी रहते हुए भाई गीरे गीरे हो जाते हैं तो उनमें जर्मिनेशन भी प्रभावित होती।
0: तो जर्मिनेशन यानी अंकुरण परीक्षण कैसे जानकारी ली थो, कैसे का जाँच करत हो की?
1: जैसे अपन ने बीज खरीद रहे हैं यहाँ तो दो चार दिन पहले 10-25 दाने अपन ने लाए उसको मिट्टी में डाल रहे या फिर बोरा की फट्टी अट्टी में ऐसी चीज कहते हैं तो मैम पूरा उनको पता चल जाता है 20 दाने अपन ने डाले तो 20 में से कितने दाने सही उंगे कहा है का नहीं।
0: माने अंकुरण परीक्षण ज्ञात करने के बाद ही फसल बोनी करत कहा ने?
1: पैसे इतनी महंगी है बरसात की फसल और बीज भी महंगी है तो ये चीजें तो स्वाभाविक थी कि उनको परीक्षण करना ही करत।
0: बिल्कुल करो भी चाहिए वीरेंद्र भैया, रेत का है बीज जो है अपनी फसल को मूल आधार कहानु, अगर वो अच्छी गुणवत्ता को है तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन अच्छे मिले, फसल अच्छी मिले तो उत्पादन अच्छे मिले। वो अंकुरण परीक्षण पहली ऐसी जरूरी कारज कहानु जो हम किसान भैयारों को हमेशा करो चाहिए और उसकी बाद जो है फसल बोनी करो चाहिए। अच्छा बीज उपचार भी बहुत जरूरी रहा था, जो बीज बो रहे हो उपचार करके ही फिर बोनी करी जाए तो इमें कौन कौन बातों को ध्यान रखा वीरेंद्र भैया?
1: उपचार तो लगभग सभी किसान करते थे तो माने 100% उपचार होते बीज को।
0: तो कौन कौन चीजों को उपयोग करत हो, जैसे देखो सोयाबीन को बीज जो है तीन प्रकार से तीन तरह से जो है उपचारित करू जाते फंजी साइड से राइजोबियम कल्चर से तो वो किलाने का कर
1: आजकल मता जैसे जे आते हैं दवाइयां वो में सभी की मात्रा रहते महंगे आ रहे हैं उपचार तो फंगीसाइड भी रहते वही में एक जैसे लिक्विड आते तो मैं सब चीजें मिश्रण रहते वो तो कूदो वही से कर रहे।
0: बिल्कुल वीरेंद्र भैया तो हमारे वो मामले में भी कैबो है कि जहाँ से अपन को बीज उपचारित करवे की ये टॉनिक दवाइयां लेने हैं भी जगह प्रमाणित रहो चाहिए, ये बात को ध्यान रखने हैं जो चीज हम ले रहे हैं वो की अच्छी गुणवत्ता के लाने पूरी जानकारी की पैकिंग पे लिखी रहा थे बा पूरी थोक बजा के और जरूरी हो तो देखो भापेल से आपको जो है कृषि विज्ञान केंद्र ज्यादा दूर नहीं है तो अपने ओते पहुंच गए और अपने के विशेषज्ञों से जानकारी ले ली और दवाई की गुणवत्ता जांच ली। देखो बीज अच्छो रहे है एक बात, दूसरी बात बीज उपचार भी ऐसे जरूरी रहा था कैसे माटी से जुड़ी भाई कई बीमारियां बीज में भी बीमारियां हो सकत है तो बेहतर भी है उपचार करवे से अपनी आगामी फसल को नहीं लग पाते अच्छो उत्पादन मिलते जो हम मेहनत कर रहे हैं उनको फल हमें अच्छो मिलते। तो जी कछु ऐसी चीजें हैं वीरेंद्र भैया जो हम किसान भैया रखो हमेशा ध्यान रखो चाहिए। अच्छा वीरेंद्र भैया बोनी कब लो आशा रखे हो, जैसे अभी एक दो झला तीन झला तो गिराई से चुके हैं तो इस समय की जो फसलें आप बोनी कर हो तो कितनो इंतजार कर हो क्या पानी और देखो गिरवी की बात फिर बोनी करो?
1: पानी और समय से भी डिपेंड करते चीजें, अब जैसे जून को लास्ट हफ्ता रहे थे और जुलाई को फर्स्ट मैंने 15 दिन तक जुलाई को समय अच्छो मान हो जाए।
0: 25 जून से लगा के अपन 15 जुलाई तक बोनी करें तो वो सबसे अच्छा समय है।
1: हाँ बढ़िया समय है, और खरपतवार भी आ जाते हैं, कछु पानी वानी गिर जाते हैं, खेत सुधर भी जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो हम आपसे जो ये जानना चाह रहे थे कि बोनी को समय भी बहुत मायने रखा थे, अपन को कृषि विशेषज्ञों की राय सलाह लेके, अपन खुद भी अनुभवी किसान भैया हैं, तो अच्छी तरह से जब बतर आ जाए, खेत में पर्याप्त नमी हो, तभी अपन को जो है अपनी फसलों की बोनी करने हैं, ताकि हम जो फसल बो रहे हैं उनको अच्छे से
1: सही उत्पादन मिले। बिल्कुल,
0: हाँ उत्पादन मिल सके, लाभ मिल सके। जी कछु ऐसी बातें हैं वीरेन भैया, जो फसल बोनी के पहले अपन खुद जरूरी चिंतन करो, मनन करो चाहिए, ना हो तो विशेषज्ञों से समझो चाहिए। और हम तो आपको एक सलाह दे हैं कि आकाशवाणी के जोन कार्यक्रम के तहत अपन चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी, नियमित जुड़े रहो। आपकी कोई कृषि की समस्या है तो स्टूडियो में प्रति गुरुवार विशेषज्ञ भी पधारत हैं, उनसे राय सलाह लेते रहो और जानकारी लेते रहो। कृषि में खूब नवाचार करो, खूब प्रगति करो। वीरेंद्र भैया आपने हमें अपनो बहुत ही बहुमूल्य समय दो, इकिलाने हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं।
2: ये बीच में भैया रो हो गो है मनोरंजन को समय से, मनोरंजन के लाने आपको लेके आए एक बहुत ही प्यारो सो लोकगीत देवकी नंदन शकवार और संगी साथियों को गाओ भाओ।

0: ये बीच में एक और किसान श्रोता भैया हमसे जुड़ गए हैं जो ग्राम कुसुमगढ़ से हैं। भैया हम आपको सबसे पहले परिचय चाहते हैं।
1: भैया हम पुष्पेंद्र ठाकुर कुसुमगढ़।
0: पुष्पेंद्र भैया खूब खूब स्वागत कर रहे हैं हम अपने आज के साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में के तहत आपको। पुष्पेंद्र भैया का चल रहा है किसानी में और अब खरीफ फसलों की बोनी की कैसी का तैयारी है, सबसे पहले तो ये बारे में बताओ
1: भैया। बखनिया करनी तो हो गई है, खरा हर बोला।

0: पानी नहीं गिर रहा हुआ है वे। पानी गिर रही है वो की बात बोने की तैयारी कर रहे हैं अपन।
1: बिल्कुल, तो अभी देखो पुष्पेन भैया, हमारे अंदाज में अभी लगभग 10-12 दिन 15 दिन को समय है, और इतने में हमें लगा था कि 3-4 अच्छी झला गिर जाए और अच्छो बता रहा पे आप और समय पे बोनी कर भी सकत हो। तो पुष्पेन भैया, बोनी में काका ले रहे आसू?
0: अब 3-4 साल से तो मैं पूरी जमीन में मका लगाते रहे
1: हूँ।
0: अच्छा, मका में घाटा आ रहा है। काहे पूरी रवि की बोनी टेम पे नहीं हो पाए, मका लगा दिए अपने बरसात में, लेट हो जाते। तो मसूर को एवरेज भी घट जाए, चना को भी घट जाए, गेहूं को भी घट जाए, इसलिए साल सोयाबीन लगाने की सोच रहे ज्यादातर।
1: नहीं नहीं लगाओ, मगर एक सलाह है अपने कृषि के जो विशेषज्ञ हैं, लंबे समय से आप किसान भैया को सलाह देते रहे हैं कि फसल विविधीकरण जो है वो अपना वो जरूरी है। माने खरीफ सीजन में अपन जैसे अपनो रकवा मान लो 10 एकड़ को है, तो पूरे 10 एकड़ की रकवा में सोयाबीन नहीं बाने अपन को। का कर लेने के 5 या 6
0: बदलत रही थे हर साल, जैसे इस साल मका वही पन्नी में, तो अगली सालों में सोयाबीन बहे, राहर भी बह दी।
1: हाँ, तो अपनों वही कह हुआ है कि पूरे रकवा में सोयाबीन नहीं, उखो बांट लो 1-2 और कम से कम 3 फसलें भी अगर हो जाए खरीफ सीजन में सहूलियत के हिसाब से उनको बोनी कर दो। उनको सबसे बड़ा फायदा कर रहा था कि मान लो एक फसल में कोनो घाटो लग गयो, बाकी की 2 फसलों में ऊपर वालों कवर भी करवा दे थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो इस हिसाब से खरीब में जो है फसल विविधीकरण को ध्यान रखने हैं और लाभ लेते रहने हैं। थोड़ा ऐसा सूझबूझ से कार्य कर वो किसान भैया को जरूर रहा था, और आप और तो अनुभवी किसान भैया हो। अच्छा, मिली थी कछु फसल गर्मी में?
0: हाँ, मूंग ली थी, सोयाबीन बैठे,
1: सोयाबीन भी लो, तो कैसो रहो सोयाबीन को अनुभव?
0: सोयाबीन बीज के हिसाब से मैंने हम नई वेरायटी ले आए थे 2-3, गर्मियों में लगा रही थी कि हमें पता है तो रेट सुधर गए, बरसात में अगर बीज हम मूल ले तो पैसा ज्यादा लग जाए।
1: बिल्कुल,
0: हमने घर को बीज बना लो गर्मियों में।
1: बहुत बढ़िया, जो आपने बहुत अच्छो कार्य करो कि जायद में सोयाबीन बोनी करके हो की फसल ले ली और अब वो बीज के रूप में उपयोग कर हो।
0: पैसा नहीं लग रहा हूँ, 12-14 हजार रुपया क्विंटल ला रहा हूँ बीज मार्केट में।
1: हाँ,
0: अब वो अपने घर को होगा, अगर 25 क्विंटल हम लेते तो 2.5-3 लाख को बीज आ। तो
1: बिल्कुल सांसी कही। अच्छा पुष्पेन भैया, की ग्रेडिंग कैसे करत हो बोनी के पहले? छाट बीन
0: ग्रेडिंग की चक्री रखे हैं अपन, पंखा मशीन भी है, पंखा मशीन में डाल पहले फिर चक्री करके उपचार करके रख ली बोनी के पहले।
1: चलो बढ़िया है, माने आप पूरी रीति नीति विधि से किसानी कर रहे हो।
0: बिल्कुल, दूसरों को भी सलाह देते अपन ऐसी किसानी करने। अपन किसानी के कार्य के संगे संगे अपन गल्ले को भी व्यापार कराते दिलेरा में।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसानी के संगे संगे उसे जुड़ो भाव कार्य व्यापार भी आप कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा पुष्पेन, किसानी में कछु नवाचार की सोच भी आप जैसे युवा किसान भैया रखे हैं? नवाचार कोई नई फसल है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमारे किसान भैया हरण ले रहे हैं। चलो तो ऐसा ही नवाचार किसानी में करत चलिए, और हमारी तो सलाह जा है कि कछु एक चीजें ऐसी आ गई हैं कि जैसे काली हल्दी भी किसान भैया हरण उगा रहे हैं, नहीं उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट भी लगा रहे हैं, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी लगा रहे हैं, एक नई चीज जो उनकी बाजार में अच्छे से अच्छी कीमत
0: मिले। उनके संग खेतों पर मेड़ों पर हम वृक्ष भी लगवाए हैं,
1: वो तो
0: नींबू के पेड़ भी लगे हैं, 100-200 आम के पेड़ भी लगे हैं, अनार के भी लगे हैं, बगीचा है सीधो।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: जामुन से लेकर आंवले से लेकर बाजार से कोई भी चीज हमारे यहाँ नहीं आती, घर में पर्याप्त से पूरी। मैं नरियल के
1: बिल्कुल, यानी कछु अगर अतिरिक्त हो रहा तो बाजार में बिक्री को ही पहुँचत होगी।
0: पहुँचत नींबू बिक जाता, आम हो जाते, ज्यादा आम भी चले जाते, भरिया लगाए रहे थे
1: बाजार में। देखो जमीन से नाज गल्लो पानी तो ले रहे हो, साग सब्जी ले रहे हो, मेड़ों पे फलदार वृक्ष लगा के अतिरिक्त आय ले रहे हो। पुष्पेंद्र भैया, यही तरीके से मन लगा के पूरी रीति नीति से किसानी के कार्य में जुड़े रहो, खूब प्रगति करो, आकाशवाणी सागर से जुड़े रहो। आपने हमें अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दो, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भैयाहरों से आज के अपने साप्ताहिक क्रम में चर्चा जारी रहने हैं, मगर एक बार फिर समय हो गया है मनोरंजन को। किसान भैयाहरों, एक बहुत ही प्यारी सी जियोनार विजय सिंह और संगी साथियों की गाई भी अपन सभी जने सुन रहे हैं।

0: कुसुमगढ़ से एक और किसान भैया हमसे जुड़ रहे हैं, नवयुवा किसान हैं। सबसे पहले तो भैया हम आपको परिचय चाहत हैं।
1: हमारा नाम है शुभम सिंह ठाकुर, ग्राम कुसुमगढ़।
0: बहुत बढ़िया शुभम भैया, किसानी के कार्य तो अब शुरुआत ही होने वाली है, बोनी की चल रही है तैयारी?
1: बिल्कुल तैयारी चल रही है।
0: तो बताओ फिर क्या तैयारी है?
1: तैयारी अपन ने बीज अपन ने रख लो है, लेकिन पहले तैयारी में अपन ऐसे ही करते हैं कि खाद लेके रख लो, बीज ले आए, कछु अपना जो बीज घर से अपन ने पिछले साल को रखो, कछु वो भी है मक्का को, सोयाबीन को, कछु उड़द है गर्मियों की, लगा भी तैयारियां चल रही।
0: अच्छा भैया एक बात बताओ, अपने कृषि के विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि अपन को खास तौर पे खाद या उर्वरक जो है वो संतुलित मात्रा में उपयोग करने, यानी जितनी मांग फसल की है उतना ही करने, तो उके लाने जरूरी रहा है माटी परीक्षण।
1: बिल्कुल,
0: तो माटी परीक्षण आपने कराओ?
1: अभी माटी परीक्षण तो नहीं कराओ, लेकिन अपन सीमित मात्रा में खाद छिड़कते हैं अपनी खेती में, जितो है कछुआ सो अपन ने जो देसी खाद होते गाय भैंसों को, अपन ने एक डेयरी व्यवसाय करो है अभी चालू, उनसे जो दूध निकला थे वो अपन दूध डेयरी पे दूध जाते गाड़ी आउट है, गाड़ी आते वो गाड़ी सप्लाई किया, तो उनसे जो खाद अपन को निकलत है मिलत है गोबर खाद, वो गोबर खाद को अपन पचाके और फिर अपने खेतों में छटक हुआ थे, तो उनमें अपन कम मात्रा में खाद लगा थे जो उर्वरक रासायनिक वगैरह खाद रही थे।
0: तो भैया हमें एक बात और बताओ, गोबर की खाद तैयार कैसे करते हो, की विधि बताओ जरा?
1: अपन देसी तरीका से करते हैं, जैसे अपने टैंक बनवा दे होदी टाइप, होदी में अपन पटकुआ रहे, दो होदी हैं, दो बड़ी बड़ी, एक होदी फुल हो गई तो दूसरी होदी पकवान लगी तो वो पच जा।
0: बहुत बढ़िया, यानी अच्छी तरह से पचा के गोबर की खाद खेतों में उपयोग करत हो। इसे फायदा जो ये भैया कि अगर पर्याप्त मात्रा में हम गोबर की खाद को प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें जो डीएपी उर्वरक और

0: खाद्य हैं, इनको संतुलित मात्रा में प्रयोग करो चाहिए। कैसे बहुत हद तक आपूर्ति जो है वो अपनी गोबर की खाद से हो जाती खेत में, तो अच्छा फायदा।
1: भैया ये खेती हमारे में ऐसी भी तैयार कर रहे हैं कि ये में अपन हम वो नहीं डालने आए खाद,
0: रसायन
1: रसायन नहीं डालने, अपन हम देसी खाद बना के डालने। तो ये में हर वर्ष अपन जो चालू करो एक एकड़ खेती अपन ने बना ली है, माने घर को जैसे खावी अपनी गेहूं है फसल जो अपनी सब्जी लगा के वो अपन हो शुद्ध मतलब खाद रहित,
0: देसी खादों से रसायन रहित जो है साग सब्जी ना जुगा रहे हो। हमें भैया बहुत खुशी हो गई कि आप जो है शुरुआत कर चुके हो कि कम से कम एक एकड़ को रकबा आपने प्रयोग के तौर पे देसी खाद और जैविक दवाओं से तैयार नाज फल सब्जी साग सब ले रहे हो, बड़ी खुशी हो गई भैया। अब हम आपको एक जानकारी और दें देते हैं, प्रयोग आपको निश्चित रूप से सफल रहे, एक एकड़ में ही रकबा को आगे बढ़ाओ। और अब जो आप जैविक साग सब्जियां जैविक नाज जैविक फल फूल ये सब आप जो प्राप्त कर रहे हो, एक इलाने सागर में जैविक कृषि हाट बाजार भी शुरू हो गया है। विस्तृत जानकारी आकाशवाणी के अपने ही कार्यक्रम से आप औरों को समय समय पे दीत रहे थे, और निश्चित रूप से आप जो है अपने ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव हैं कोटवार हैं इनसे जानकारी लेके आसपास आपके कृषि को निश्चित रूप से कोनो ऐसो केंद्र हुई है जो तहसील स्तर पे कार्य कर रहे हुए बलेहरा में हो सकत है।
1: हाँ बलेहरा में भी है, कछु जैसी नगर में भी है, जैसा जी ग्राम सेवक वगैरह है ये लोग बताते रहते हैं, ऐसी जानकारी तो मिलती मोटी मोटी जानकारी।
0: जैविक हाट बाजार इतने लगन लगो है और इतने जो किसान भाई आ रहे हैं जैविक तौर तरीकों से साग सब्जी नाज वगैरह उगा रहे हैं, उनको एक मंच मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, वे अपनी चीजें लगाए उनकी बिक्री सुनिश्चित प्रशासन कराते हैं उचित और बहुत अच्छे दाम जो है वे मिलत है। इसे एक फायदा जो है कि हम शहर वासियों के लाने नगर वासियों के लाने जैविक साग सब्जी फल फूल ये सब चीजें आसानी से प्राप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक उचित कीमत मिल जाए। तो जो एक मंच तैयार है निश्चित रूप से आप जो है जैविक को रकवा बढ़ाओ, किसानी में प्रगति करो, अच्छो उत्पादन लाभ लियो और अपने आसपास के किसान भैयाओं को भी ये सब कार्य कर भी प्रेरित करो। भैया आपने हमें अपना बहुत ही उपयोगी समय हमारे साप्ताहिक क्रम में दो, इकिलाने हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं।
2: भैया हरो जो है तो आज को अपनो शनिवार को साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में और ई क्रम में ग्राम कुसमगढ़ ग्राम भापेल के किसान भैयारों से किसानी पशुपालन बागवानी की बहुत ही उम्दा और अच्छे से अनुभव आप सभी जनों से हमने साझा करे। संगे संगे खरीफ फसल की बोनी की तैयारी पे भी हमारे किसान भैयारों से चर्चा हो गई। सभी किसान भैयारों ने बड़े उत्साह से अपने किसानी पशुपालन बागवानी के अनुभव हमसे हमारे कार्यक्रम में साझा करी। निश्चित रूप से भैयारों जी अनुभव एक ऐसे अनुभव रहे थे आप तमाम किसान श्रोता भैयारों तक तमाम बातें तमाम अनुभव पहुंचत हैं और निश्चित रूप से इनसे भी आप लाभ ले तो कैसे हो तो जो ही है भैया आपस में जो अपन चर्चा करते हैं एक दूसरे की किसानी पशुपालन बागवानी के कार्य सुनत हैं समझत हैं तो वे निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत को काम करते हैं एक अनुभव को काम करते हैं एक मदद को काम करते हैं। तो भैयारो आज के अपने साप्ताहिक क्रम में आप तमाम किसान भैयारों ने हमें अपना बहुत ही बहुमूल्य समय दो एक इलाने हम आप तमाम किसान भैयारों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और अब हो गई है चलवे की बीरस सभी जनों से कह रहे हैं जय हिंद।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान
1: पीएम किसान। तो नीरज भैया, जो संदेश सुनो, एक ही पहले अपन ने जो आप कुसुमगढ़ से जो स्थल ध्वनियांकन पे आधारित जो कार्यक्रम लेके आए थे साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में, वो सुनो, बड़ी अच्छी जानकारी होता है कि दूसरे किसानों को मिली हुई है। और अब घड़ी कह रही है कि अपन सीधे अनाज भाव और मौसम की जानकारी।
2: बिल्कुल, तो झट्टे ही किसान भैया रो आज अनाज के भाव बता दी। मैं कृषि उपज मंडी में आज प्रमुख अनाजों के भाव जी रहे। 2300 रुपया से 3000 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं को भाव रहो। सोयाबीन 6600 रुपया से 7600 रुपया प्रति क्विंटल। चना 5650 से 6200 रुपया प्रति क्विंटल। मसूर 6400 रुपया से 8800 रुपया प्रति क्विंटल। उड़द को भाव अनाज मंडी में 6615 रुपया से 7500 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग 6960 रुपया से 7500 रुपया प्रति क्विंटल की भाव रही।
1: बहुत धन्यवाद नीरज भैया जा जानकारी देवे के लाने। और अब अपन जानकारी देते हैं मौसम की। तो आज को अधिकतम तापमान रहो 37.2 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा रहो। न्यूनतम तापमान रहो 25.3 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा रहो। आर्द्रता भुंसरा की 62% रही और संजा बेरा की रही 53%। और ए मौसम की अबे तक की वर्षा की बात करें तो कुल वर्षा 68.7 मिलीमीटर रही।
2: बिल्कुल किसान भैया, और कार्यक्रम किसान वाणी समाप्त करे कि पहले निवेदन, अपने कार्यक्रम से हर रोज जुड़े रहने हैं, किसानी पशुपालन बागवानी की जानकारी लेते रहने हैं। और अब सतीश भैया ले जाए आज्ञा किसान भैया।
1: तो सभी जनों को सतीश साहू
2: और नीरज सोने की
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला अंतर्गत कार्यक्रम का प्रसारण। विषय है संस्कृति। इस कार्यक्रम के लिए हम आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
2: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
4: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं, जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं?

सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, समृद्ध मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है।

0: कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं पति दीदी बन गई हैं। तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा, जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सशक्तिकरण का,
0: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो कि अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते, अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
1: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता,
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती है, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
1: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
1: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
1: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं जो

0: देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी, 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास की आजादी के बाद 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके लिए है, ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी थी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी कोई जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो कहा होता मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री में पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको, कि जो जो करना चाहे जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं। 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है। 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है। वो तो वो एक अवसर, और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है इस, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहाँ उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहाँ पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है। लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसा अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, तीन इंस्टॉलमेंट में
0: 2,000 के, तीन इंस्टॉलमेंट में 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रिवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10-12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वहीं बन रही हैं। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से

0: किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करे, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखिए कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि जितने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते,

0: हैं प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है स्पेशली, तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता।
1: बिल्कुल,
0: सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है, तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को, तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया,
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की, वो भी अलाइव,
0: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मोर्टैलिटी रेट है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी,
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कमाने लगे।

0: वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
1: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत।
2: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला जी, टिक्की वाला।
2: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं। अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
2: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
2: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
3: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
2: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो, कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
2: संजना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
2: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे, तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ, अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा, लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गई। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
2: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष का प्रसारण अभी किया जा रहा था।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8 बज
1: आकाशवाणी का यह सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:35 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

रेखा भारद्वाज के स्वर में अभी ये गीत अभी आपने सुना। इसी गीत के साथ संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां

0: और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्सेस स्कीम के जिन लोगों ने बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लोकल टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: We have been able to achieve that in the first.
7: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
6: They are all designed in India now.
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
8: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am
2: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।

अनवर। इस फिल्म से यह गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी रूप कुमार राठौर की। गीत लिखा था सईद कादरी ने, संगीत था मिथुन का। पसंदगी थी आप सभी की। मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीवियम और आपके सभी साथी। बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज, विशाल और आपके परिवार के सभी सदस्य। संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी और आपके सभी साथी। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। पेठण से सुरेश, अनीता, आरती, सोनल, सिया और आपके सभी साथी। गौरझामर सागर से कुंदन लाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद्य, मनोज और आपके सभी साथी। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री और आपके परिवार के सभी सदस्य।

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: इस रविवार फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
2: सुनिए कल सुबह 8:30 से बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा, प्रायोजक सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर।
3: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं शफकत अमानत अली और शंकर महादेवन की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का। पसंदगी थी आप सभी की। उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन और आपके सभी साथी। मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू और आपके सभी साथी। चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल, बिट्टा और आपके सभी साथी। पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपंदर, वीरेंद्र, कुलदीप, दमन और अभिजोत। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस और आपके सभी साथी। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस, निखिल, यश और आपके सभी साथी। महाराष्ट्र से गंगा

0: गंगाधर, ये मेकर प्रमोद और प्रदीप।
1: सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर द्वारा प्रायोजित हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम को सुनिए रविवार सुबह 11 बजे। इस रविवार सुबह 6:20 पर सुनिए शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर द्वारा प्रायोजित डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित व स्वरबद्ध योगा गीत।
0: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी नगमा।

गुरु इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं एआर रहमान और चिन्मयी की। गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत था एआर रहमान का, फरमाइश थी आप सभी की। वडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा और आपके सभी साथी, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा माही और आपके सभी साथी, इसी गीत को सुनना चाहा था। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया और आपके सभी साथी, महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोडके, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी या गायत्री, यज्ञेश और आपके सभी साथी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला और अंतिम फरमाइशी गीत।

0: इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी राहत फ़तेह अली खान की। गीत लिखा था अमजद इस्लाम अमजद ने, संगीत था शाही का। फरमाइश थी आप सभी की। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, मयंक, दीपक, चेतन, दिशा, कुश और आपके सभी साथी। जलालाबाद से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, राजकुमार, शेख, मूसा और आपके सभी साथी। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भेंट वार्ता, सतह से शिखर तक योग का सफर। योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्य से योग और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद खास विषय के ऊपर आज हमने इस भेंट वार्ता का आयोजन किया है। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो योग के क्षेत्र में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप साक्षात योग की चलती फिरती पाठशाला हैं, संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन हैं। योग जगत में आपका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है और भारत भर में योग को प्रसिद्धि दिलाने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और 70 वर्ष हो गए हैं आपको योग करते हुए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योग क्षेत्र में आपका कितना बड़ा योगदान है। हमारे बीच हैं डॉक्टर विष्णु आर्य जी। आप योग गुरु होने के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य भी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर विष्णु आर्य जी, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और बहुत स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न जेहन में दिमाग में आ रहा है कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना शुरू किया गया और पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार किया। भारत के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। लेकिन आप 70 वर्ष से योग कर रहे हैं, जब शायद ही योग विज्ञान के बारे में, विधा के बारे में, कला के बारे में लोग बात करते होंगे। तो हम योग के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रारंभिक यात्रा कैसी रही, शुरुआत कहां से हुई आपकी, और कई विषयों के आप गुणी हैं, धनी हैं, तो क्या क्या विषय में आपने दक्षता, क्वालिफिकेशन, योग्यता हासिल की है?
2: आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविकता योग जो है ये कोई नई चीज नहीं है। चारों वेदों में जो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में लगभग 10,800 मंत्र हैं और अनेक मंत्र ऐसे हैं जिसमें योग, प्राणायाम, ध्यान, मनोविज्ञान, आयुर्वेद सारी चर्चा की हुई है। क्योंकि हमने बचपन से ही, पहले हम शाखा में जाते रहे, फिर आर समाज से संबंध रहा, आर समाज के मंत्री, प्रदेश मंत्री और राष्ट्रीय रहे और वेदों के ऊपर अध्ययन करते हुए व्याख्यान देने जाते थे और योग के गुरुकुल कांगड़ी के लोग आते थे। आसन प्राणायाम तो करते थे, कुछ वो विशेष प्रकार के प्रदर्शन भी करते थे, जैसे हाथों से थाली फाड़ना, मोटर रोकना और पत्थर फड़वाना। तो हमारे लिए बचपन में रुचि रही कि हम भी क्यों नहीं कर सकते, जब ये कर सकते हम ही करेंगे। तो हमारे एक गुरु थे, उन्होंने कुछ प्राणायाम वगैरह जब शुरू किया आर समाज में, तो हमने वो सारी विद्याएं सीखी। हम भी गाड़ी रोकते

0: थे, पत्थर फड़ाते थे, हाथ से कांच बल्ब पीसते थे। पर वो सब हमने गुरुजी ने जब हमारे सत्यानंद जी ने कहा कि प्रदर्शन बंद करो तो मैंने बंद कर दिए, सिर्फ योग का मार्ग अपनाया। वास्तव में योग जो है भारतीय संस्कृति का अनादिकाल से चला आ रहा।
1: जी, भारतीय संस्कृति से अनादिकाल से चला आ रहा है। डॉक्टर आर्य, आप योग के अलावा संगीत में, आयुर्वेद में, वैदिक शिक्षा में भी काफी दखल रखते हैं, इतने सारे क्षेत्रों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ?
0: बात यह है कि अपने अंदर क्षमता चाहिए, उत्साह चाहिए, सत्संग चाहिए और संस्कार चाहिए। हमारे लिए जो संस्कार मिले वो अच्छे लोगों के संस्कार मिले, और उन संस्कारों के कारण हमने योग, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, वैदिक परंपरा के मंत्र, हवन विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ये सब सीखा। और उसके में रुचि हुई कि अपने काम धंधा करते हुए फिर भी हमें प्रचार प्रसार करके दूसरों को मार्गदर्शन देना चाहिए, और उसी उद्देश्य से अपना कार्यक्रम करते हुए योग के क्षेत्र हमें सबसे अच्छा लगा। वास्तव में अपने यहाँ भारतीय परंपरा थी कि 6 वर्ष 8 वर्ष की आयु में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री मंत्र, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। उसका परिणाम ये था कि हर घर में योग, प्राणायाम, वेद, गायत्री ये सब चलती थी। दुर्भाग्य रहा कि जब से हमारे देश में विदेशी लोग आए, उन्होंने हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार नष्ट कर दिए। उसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश दरिद्र हो गया, सांस्कृतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, व्यवहार और कई कारणों से
1: नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा,
0: नैतिक मूल्यों का काफी पतन हुआ। तो वास्तव में आज हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संस्कारित व्यक्ति हैं, और परिणाम ये हुआ कि योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में उन्होंने एक जागृति पैदा कर दी। और वास्तविकता ये है कि योग के अनेक अनुसंधान हो रहे, और हमारी जो परंपरा है हमारे व्यक्तिगत, वह स्वामी शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वालों से है। उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती, नरेंद्रानंद जी सरस्वती, और बहुत बड़ा आश्रम उनका मुंगेर में है, विश्वविख्यात।
1: डॉक्टर आर्य, आपने भारतीय परंपरा की भी बात की और आश्रम की बात की, तो भारतीय संस्कृति है या परंपरा है उसमें 4 आश्रमों का वर्णन है, जिक्र है, तो आपने इन 4 आश्रमों को अपने जीवन में कैसे उतारा है, कैसे ढाला है, कैसे जिया है?
0: ब्रह्मचर्य आश्रम पहला था, तो हमारे गुरु जी कहते थे कि ब्रह्मचारी रहोगे तो सारे गुण अंदर आएंगे। उसके बाद ग्रस्त जीवन में भी रहे, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, सबकी शादी विवाह सारा संस्कार करते हुए, हमने 2000 में हमारी पत्नी का निधन हो गया, तो हमारे गुरु जी पहले से कहते थे कि तुम्हारे लिए संन्यास लेना है, तुम्हें राजयोग नहीं है, तुम्हें ऋषि योग है। तो हमारे ठीक है, तो संस्कार बनते रहे, तो हमने वहाँ पर फिर योग में, हमने हमारे यहाँ जो पद्धति है वह योग में दीक्षा की है। तो पहले हमने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और वानप्रस्थ ले लिया। तो 2012 में हमारे गुरुजी बोले, नरेंजन जी, कि अब तुम्हारे लिए संन्यास ले लेना चाहिए। तो हमने कहा सब बात से निर्भित, हम तैयार। उन्होंने जैसी कहा आज तुम्हें संन्यास लेना, हम नाम ले लेंगे। दूसरे दिन उन्होंने 2012 में हमें कहा चलिए, तो उन्होंने हमारे लिए जो वैदिक संस्कृति के संस्कार हैं, चूँकि हमने जब 2012 में संन्यास लिया तो संन्यास की एक परंपरा है, संन्यास में नाम, जाति, कर्म सब बदल जाते हैं। अब हमारे लिए स्वामी निरंजन जी ने जो नाम दिया है संन्यास का, वह स्वामी ध्यानेश्वर सरस्वती, हम वैदिक परंपरा के संन्यासी हैं। संन्यासी में 3 मुख्य बातें होती हैं, उसकी जाति नहीं होती, वर्ण नहीं होता, और यज्ञोपवीत, चोटी, इनसे कोई संबंध नहीं होता, और वो अपना पुण्यदान खुद कर देते हैं। तो हमारे लिए गंगा जी में, मुंगेर में, पंडितों के द्वारा सारी विधिवत हमारा अभिषेक, पुण्यदान करके संन्यास ले लिया। अब हमें उनसे बात की तो हम सामाजिक व्यक्ति हैं, तो उनका एक बात का ध्यान रखना कि अपने नियम का पालन करते हो सब जगह जा सकते हो, कर सकते हो, खान पान रहन सहन अपनी जो क्षमता है उसको कभी कम नहीं करना
1: जी।
0: योग साधना करना, कराना और देना सीखो, तभी से हम हर समय योग का मार्गदर्शन करते हैं
1: जी। योग साधना करना और समाज को भी योग देना, ये संस्कार, ये शिक्षा आपको अपने गुरु से मिली और लगातार आप इसका पालन कर रहे हैं। डॉक्टर आर्य, हम आपको पीछे ले चलना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से तो पूरी दुनिया जान रही है, जबकि ये पुरातन संस्कृति की एक अनमोल देन है, धरोहर है भारतीय संस्कृति की।

0: आपने जब योग शुरू किया, निश्चित रूप से योग के बारे में जानने वाले, योग के अभ्यासी बहुत कम होंगे जो योग के बारे में बात करते होंगे, तो शुरुआत में जब आपने योग करना शुरू किया और समाज में लोगों को योग के बारे में बताना शुरू किया, तो कैसा रिस्पॉन्स, कैसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आपको मिलती थी?
1: क्या था, लोगों में पहले एक रुचि थी व्यायाम करने की, अखाड़े जाने की, लाठी चलाने की। वो पद्धति में लोग जुड़े हुए थे, सिर्फ उनको दिशा निर्देशन करना था। तो खाली व्यायाम करते थे, मलखम भी करते थे, हम भी करते थे। तो उनके लिए जब कहा कि आसन करना, इससे ही फायदा होगा, इससे ही फायदा होगा, तो एक शुरू हो गए लोगों में। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी संख्या में लोग हो गए। तो ये रुचि पैदा करने का एक तरीका भी होता है, हर एक की वाणी में, व्यवहार में, रहन सहन में। आप कोई दारू पी और योग से खाते तो चलेगा नहीं, है ना? ये सब पाखंडी लोग हैं वास्तविकता।
0: कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, आपको वचन, कर्म और आत्मा से एक होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर आर्य। आपने योग विज्ञान को लेकर के जगह जगह प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित करना, ये सब काम भी शुरू किया। तो पूरी आपकी यात्रा कैसे रही, कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ आपको ट्रेनिंग देने का मौका मिला?
1: मध्य प्रदेश में तो हर जगह जाते ही थे हम। उसके अलावा भी हमारा मिलिट्री में बहुत बड़ा संपर्क रहा। मिलिट्री के माध्यम से, मिलिट्री के बड़े बड़े जो सेंटर हैं, जम्मू कश्मीर, पालमपुर, लखनऊ, बबीना, अपना कानपुर, तो वहाँ पर जो मेजर जनरल थे वो हमारे सब परिचित रहे। और डॉक्टर अपने कृष्णा राव जी का नाम सुना हो, जो हमारे योग के कारण संपर्क में रहे, वो हमारे लिए सब जगह भेजते थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी मिलिट्री में कि टेंशन बहुत रहता था,
0: मानसिक तनाव।
1: हाँ, मानसिक तनाव, क्योंकि बाहर रहना, बच्चे कहीं बेकहीं, और कोई गारंटी नहीं कहाँ कब भेज दें। तो मानसिक तनाव के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तो उनके लिए कुछ आसन के व्यायाम तो वो करते थे, पर उनको कुछ आसन और प्राणायाम, ध्यान और शवासन, रिलैक्सेशन, जिससे तनाव मुक्त हो, वो क्रियाएं हमने सिखाई। तो उससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। यहाँ कैंप भी लगाए मिलिट्री में और शिक्षक भी तैयार किए। दूसरी बात, एक और विशेषता बतलाएं आपको, मानसिक तनाव में कितना अंतर होता है। सागर में जो सेंटर है मिलिट्री का, उसमें फायरिंग भी होती है और मऊ में उसके कॉम्पिटिशन होता है। तो यहाँ की जो 19वीं-22वीं रैंक थी यहाँ, तो जब कृष्णा राव जी जनरल बने, तो कुछ कारणों से संपर्क था हमारा
0: थल सेना अध्यक्ष थे।
1: हाँ, के कृष्णा राव गवर्नर भी रहे, वो सेना अध्यक्ष भी
0: जी,
1: रहे
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि गुरु जी, आप ऐसे उनको सिखाइए जिससे ये फर्स्ट आए और मानसिक तनाव कम हो। तो हमने उनके लिए एक महीने कुछ क्रियाएँ और आसन और प्राणायाम के साथ साथ शवासन में एक योग निद्रा होती है, योग निद्रा के माध्यम से उनकी मानसिक स्थिति बनाई। और योग निद्रा में ही हम उनको फायरिंग कराते थे, तो निशाने पर मारते थे। जब वो निशाना मारते थे तो पूरा बैठता था। तो अगली बार जब उनका कॉम्पिटिशन हुआ तो इंडिया में फर्स्ट आए, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें सब जगह मिलिट्री में सिखाना। तो यहाँ शिक्षक भी तैयार किए 2000 मिलिट्री के, एक कारण से वहाँ पर मिलिट्री में भी और शिक्षण संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, मनोविज्ञान विभाग में, कई जगह जाना आना रहा, पुणे में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, बहुत, अब कहाँ कहाँ तक गिनाया आपको।
0: बहुत सही बात आपने कही कि निशानेबाजी का जो खेल होता है, शूटिंग का जो खेल होता है, वो ध्यान और एकाग्रता के ऊपर केंद्रित होता है। और आपने ऐसे योग आसन सिखाए जिनसे ध्यान और एकाग्रता के स्तर में बढ़ोतरी हुई और सागर का जो आर्मी का कैंप था वो फर्स्ट रैंक ला पाया। योग में और भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा की भी बात होती है, तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से योग की विधा को, योग की यात्रा को, योग की शिक्षा को आगे बढ़ाना, इसके बारे में बताइए हमें कुछ। और कुछ खास शिष्य जो आपके काम को आगे बढ़ा रहे हों या आपसे सीख के उन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया हो।
1: योग जो है या कोई भी विद्या है, वो गुरु परंपरा से ही आती है
0: जी।
1: चाहे शिक्षा हो, पहले 3 गुरु हुआ करते थे, माता, पिता और आचार्य। इसलिए कहा है मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। अब वो बात तो रही नहीं, है ना, इसलिए संस्कार नहीं। और हम लोगों के लिए जो आधार मिला, संस्कार मिले, वो गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण। एक बार समर्पण कर दिया, गुरु मान लिया मैंने, वो जो कहेंगे करेंगे, पर विश्वास होना चाहिए। और उसके कारण जो आत्मविश्वास भी बढ़ता है और विद्या सीखने में सफलता भी मिलती है
0: जी।
1: आज तीनों बातों की कमी है, इसीलिए युवा पीढ़ी फेल हो रही है, अपनी नशाखोरी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भी आजकल गुरु नहीं रहे, तो शिष्य कैसे रहेंगे। परिवार में संस्कार नहीं, मोबाइल ने और सत्यानाश कर दिया। जब तक गुरु परंपरा माता से नहीं चलेगी, पिता से नहीं चलेगी, गुरु की कौन मानेगा? पहले संस्कार तो माँ देती है, दूसरा पिता देता है, तीसरा फिर गुरु होता है।
0: जी जी, कुछ खास शिष्यों का नाम अगर आप लेना
1: चाहें। हमारे यहाँ बाहर अभी हमारा 2 साल विदेशों में भी चला ऑनलाइन, बहुत से शिष्य यहाँ पर हजारों की संख्या में, सागर में भी करीब 50-60 शिष्य ऐसे हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, क्लासें ले रहे हैं। और हमारा जो योग संस्थान है वो 55 साल से चल रहा है, ट्रस्ट बना दिया है, और उसमें प्रतिदिन 2 क्लासें चलती हैं, 6:30 से 8 और 8 से 9
0: निःशुल्क जो है योग ट्रेनिंग दी जाती है।
1: निःशुल्क और भवन बन गया है कुछ सहयोग से, कुछ निधि से, और उसमें करीब करीब 200 आदमियों को कराने कराने की व्यवस्था है, साधन जुटाते हैं सभी के सहयोग से। और सबसे ज़्यादा लाभ इस समय जो हो रहा है वो युवा पीढ़ी को मानसिक तनाव में हम ध्यान कराते हैं, कुछ आसन प्राणायाम। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं डायबिटीज, साइट का, सिलेब्लिक्स, सर्वाइकल, मानसिक तनाव, इसके बहुत बीमार आते हैं।
0: डॉक्टर आर्य, आपने बीमारियों की बात की और किस किस तरह के मरीज आपके निकेतन में, योग निकेतन में आते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, तो आपने इतनी लंबी यात्रा में, योग की यात्रा में, कौन कौन सी बीमारियों का निदान होते हुए, निवारण होते हुए प्रत्यक्षतः आपने देखा है और आपने योग आसनों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से सिद्ध किया है, उसको सफल किया है?
1: सागर के नगर का यदि ले लिया जाए, बाहर का तो छोड़ दें, तो लगभग 2000 आदमी ऐसे होंगे जिनके हमने साइट का, सर्वाइकल, सिलेब्लिक्स और घुटनों का दर्द, डायबिटीज, ये सब ठीक किए। और मानसिक तनाव के कारण यदि हम सोच लें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा, और मानसिक शक्ति बढ़ जाए तो सब कुछ कर सकता है। तो हम लोग ध्यान में और आसन हम लोग कम कराते हैं। आसन कोई व्यायाम नहीं है, वास्तव में आसन जो है, योग दर्शन कहता है आसनम स्थिरम सुखम, किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ये व्यायाम हो रहा है। और एक बात और भी अपने योग दर्शन कहता है, योग शास्त्र कहते हैं कि 1 मिनट यदि वायु रोक ली जाए, प्राणायाम कर लिया जाए, तो 12 मिनट की आयु बढ़ती है, 12 घंटे की आयु बढ़ती है 1 घंटा यदि रोका जाए तो। प्राणायाम वास्तव में प्राणायाम नहीं हो रही, श्वास का खेल हो रहा है। प्राणायाम गति रुत्वा प्राणायाम परायणा, उसकी गति रोकना चाहिए, तब तो उसका फायदा होगा। खांसी सांस लेने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम होने से कुछ होने वाला फायदा बहुत होगा, पर जो वास्तविक होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा।
0: नियम से, तरीके से और जो प्रोटोकॉल है उससे करना पड़ेगा, तभी उसका संपूर्ण लाभ आप ले पाएंगे। डॉक्टर आर्य, आपने व्यायाम की बात की, तो योग को अक्सर जो आलोचक होते हैं कई बार कहते हैं कि शारीरिक खींचतान है, सामान्य एक्सरसाइज है, व्यायाम है, तो योग व्यायाम से अलग कैसे है?
1: देखिए, व्यायाम होता है जल्दी जल्दी थकाने के लिए, और योग होता है शरीर की थकान, मन की थकान मिटाने के लिए। जब शरीर की थकान कम होगी तो सर्कुलेशन बढ़ेगा, व्यवस्थित होगा। और आसन का नियम है किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक बैठने का नाम, लेटने का नाम आसन है। जैसे आप कोई चाय बनाता है, बार बार उठाएंगे तो कैसे गर्म होगी? तो किसी भी स्थिति में जब रुके रहेंगे तो उन आसनों से उन स्थानों पर तनाव पड़ेगा, प्रभाव होगा, जल्दी करने से नहीं होगा।
0: जी,
1: असर होना चाहिए, खिंचाव पड़ना चाहिए, पर जल्दी करने से खतरा भी रहता है, झटके लग जाए, टूट जाए, गिर जाए। इसी प्रकार प्राणायाम है, प्राणायाम आसन के बाद करना चाहिए, श्वास के साथ शवासन करना चाहिए, जिससे शरीर का पूरा तनाव कम हो जाए, सामान्य श्वास हो जाए। उसके बाद यदि आप ध्यान करेंगे, शवासन करेंगे, योग निद्रा करेंगे, योग में बहुत सी क्रियाएं मानसिक तनाव को, आप कुर्सी पर बैठे बैठे योग और प्राणायाम और ध्यान कर सकते हो, और आप मानसिक तनाव दूर कर सकते 12 मिनट में, आपको नींद आएगी कुर्सी पर बैठे बैठे। वो तरीके हैं, वो सरल तरीके हमने अपनाए हैं, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चलना ही विशेषता है।
0: जी,
1: हम ऑफिस में रहते, हमने जजों को बहुत सी जगह सिखाया कुर्सी पर बैठे नहीं है समय, क्या करें, ऑफिस में है, तनाव बढ़ रहा है, तो उनके लिए बतला दिया इस प्रकार से आप बैठ जाओ सीधे और 5-7 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठो, क्या सोचना, क्या करना, ये करना है, 10 मिनट में आ रहे हैं, तनाव मुक्त हो जाएंगे, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तनाव नहीं होगा तो। तनाव में तो सारी बीमारी होती, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बीमारी क्या है, सब तनाव का कारण है। खान पान नहीं है, कभी 12 बजे रात तक खा रहे लोग, उठते ही नहीं, पानी पीते नहीं, ये सब गड़बड़ है ना खान
0: जी। जी, पारंपरिक रूप से जो योग की क्रियाएं हैं या आसन हैं या जो नियम बताए गए हैं वो चले आ रहे हैं और उसका पालन किया जा रहा है, चूंकि आप इतने पुराने अभ्यासी हैं, 70 वर्षों से आप योग कर रहे हैं, तो आपने अपने योग अभ्यास के दौरान अपनी समझ से कुछ क्रियाएं कुछ आसन जोड़ा हो योग विधा में योग परंपरा में?
1: वैसे अब हमारी उम्र के हिसाब से, क्योंकि हम 95 के हो चुके हैं
0: जी,
1: 96 में जा रहे हैं, और हम करीब 250 प्रकार के आसन करते थे और कई क्रियाएं करते थे। अब हमने शरीर के लिए व्यवस्थित रखने के लिए कुछ आसन, प्राणायाम और तनाव मुक्त के लिए ध्यान हम ज़्यादा करते हैं, और ध्यान की कोई क्रियाएं खाली आप ओम का उच्चारण यदि विधिवत कर लें, भ्रामरी प्राणायाम कर लें, क्योंकि नाद योग जो है, नाद ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म है, यदि उसको ठीक ढंग से कर लें तो मानसिक तनाव कम हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, गोली नहीं खाना पड़ेगी। तो हमने ये अभ्यास अभी भी करते, क्योंकि हमारा गिर गई थी, हड्डी टूटने के बाद 1 महीने तो अस्पताल में रहा, उन्होंने ऑपरेशन कार्ड पर नहीं किया और बांध दिया, घर में भी लटके रहे पाँव भर, उसके बाद हमने कहा बंद कर दो। अब उसके बाद हमने योग शुरू किया तो अब पालथी मारते हैं, बैठते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, सिर्फ अभी पैर में कमजोरी हड्डी के कारण थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, बाकी स्वस्थ हैं, और अभी हम जीवन में सरदार सतम प्रार्थना करते हैं और उसकी इच्छा ले जाए तो तैयार है।
0: निश्चित रूप से आपका जो आत्मबल है योग की शक्ति से आप उसे भी सही कर लेंगे,
1: करें हैं,
0: किया और पूर्णता स्वस्थ होकर के आप जैसे समाज में योगदान योग के क्षेत्र में दे रहे हैं उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। डॉक्टर आर्या, आपसे योग के बारे में बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, खासकर आज के समय की बीमारियों की बात की जाए, अनिद्रा की बात कर ले, माइग्रेन की बात कर ले, मानसिक तनाव की बात कर ले, युवाओं में संबंध विच्छेद की बात कर लें, चिड़चिड़ापन की बात कर लें, बहुत सारी समस्याएं हैं जो मानसिक रूप से जुड़ी हुई हैं, मानसिक स्थिति पे निर्भर करती हैं। तो ऐसे में आज के युवाओं को आप क्या सलाह देंगे जिससे वो परिवार में, समाज में, करियर प्रोफेशन या नौकरी पेशा में, सब जगह एक संतुलन बनाते हुए एक बेहतर मानव गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जी सके?
1: सबसे अच्छा उपाय ये है कि जल्दी भोजन करें, रात में मोबाइल बंद करें और सुबह जल्दी उठें, 2-3 गिलास पानी पिए, पेट साफ करें और कुछ आसन करें। आसन का मतलब ये है कि अपने शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, इन ग्रंथियों का प्रभाव है जो शरीर में विकृति आती है
0: जी,
1: और इन ग्रंथियों का बैलेंस ठीक बना रहे इसके लिए कुछ आसन भी हैं, प्राणायाम भी है और ध्यान है। जब माइग्रेन वगैरह जो कहते हैं, कोई हम बीमारी नहीं मानते इनके लिए, है नहीं बीमारी, ये मानसिक सोच है। अब आप यहाँ बैठे बैठे सोचो कोई मकान न गिर जाए तो अब गिरेगा कैसे,
0: मानसिक स्थिति है, स्टेट ऑफ माइंड है।
1: हाँ, मानसिक स्थिति कमजोर, और मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया सबका, दिन भर चलाते रहते, रात भर चलाते रहते।
0: कुछ क्रियाओं का नाम बताइए आपकी, किसके माध्यम से हम दूर कर सकते हैं?
1: इसके लिए सबसे बढ़िया है 5 आसन, सरल। मकर आसन में लेट जाए, मकर आसन में क्या है, कमर ठीक होगी, गला ठीक होगा, पेट ठीक होगा, कमर का दर्द नहीं होगा और पेट और कमर का सर्कुलेशन ठीक बना रहेगा।
0: तो
1: सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रीढ़ होती है, और रीढ़ यदि ठीक है, आपकी पीठ ठीक है तो सब कुछ ठीक, पेट ठीक और पीठ ठीक, और फिर दिमाग ठीक, तो सब कुछ। दिमाग के लिए क्या है, कुछ प्राणायाम करना चाहिए। जैसे सबसे सरल तरीका ये है कि आप जानते हैं कि शब्द ब्रह्म है, नाद योग, और ध्वनि विज्ञान है। यदि खाली 50 बार ओमकार मंत्र की ध्वनि की जाए तो मानसिक तनाव कम हो सकता है। और वो भी कैसे, आदि श्वास में ओम का उच्चारण करें, आदि श्वास में माँ का उच्चारण करें ओम की ध्वनि करके, और 50 बार में तत्काल असर होगा उसका, क्योंकि नाद योग जो है योग की महान विधि है, और ध्वनि विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि जो है पूरे मस्तिष्क को ठीक करती है।
0: एक बार अगर उसका आप एक उदाहरण करके दिखा सकें तो
1: आप देख सुन लीजिए।

0: इसमें प्राणायाम भी होगा और श्वास की जो ध्वनि होती है वो मस्तिष्क की तरंगों को ठीक करेगी।
1: श्वास का जो उतार चढ़ाव था इसके बारे में बताइए कि ओम का उच्चारण करते समय श्वास का उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए?
0: उसका एक क्रम होना चाहिए
1: जी,
0: जल्दी श्वास छोड़ना भी नहीं, जल्दी लेना भी नहीं, एक सी गति से। एक सी गति से लेंगे तो फेफड़े तक पहुँचेगी, और जल्दबाजी करोगे तो बाहर भी नहीं जाएगी, अंदर भी नहीं जाएगी। फेफड़े फूलना चाहिए, और प्राणायाम ही महत्वपूर्ण है जिसके कारण दीर्घायु लोग होते थे। महत्वपूर्ण बात है,
1: जितनी श्वास को वायु को अंदर लेंगे उतना ज्यादा फैलाव होगा,
0: और ऑक्सीजन मिलेगा, हृदय की गति नहीं खराब होगी, सारी कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, मस्तिष्क में तनाव नहीं रहेगा। मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियाँ, सारा तो वही काम करता है, उसी से हार्ट अटैक, उसी से ब्लड प्रेशर, उसी से जमाने बीमारी होती। तो ये सरल विधि है, खाली बैठे बैठे कुछ नहीं बनता है, यदि 50 बार भी कर लिया जाए, 25 बार, तो ये तनाव कम हो सकता है
1: जी। डॉक्टर विष्णु आर्य जी, कुछ लाइलाज बीमारियाँ होती हैं, डॉक्टर भी कई बार उसका इलाज कर पाने में सफल नहीं होते हैं, मरीज बहुत बेबस हो जाता है और कई बार हार मान लेता है कि बस अब हो गया, बीमारी ही हमारे जीवन का अब एक नाम बन चुकी है और हमें इसी के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा। लेकिन आप 96 वर्षों से हैं, आपने बताया आपका एक्सीडेंट भी हुआ, आप बाकायदा अपने योग से बाहर आ गए उस बीमारी से, और आगे भी आप कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य धारा में लौट करके योग का प्रचार प्रसार अभ्यास जैसे कर रहे थे वैसे करते रहें। घुटने का दर्द हो गया, साइटिका की समस्या हो गई, या फिर स्लिप डिस्क हो गया, कमर दर्द की समस्या हो गई, इस बीमारी से भी लोग बहुत जूझते हैं, तो क्या योग के माध्यम से हम इसका इलाज कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं?
0: 100% हमारे यहाँ कोई नागपुर, कोई इंदौर, पुणा ऑपरेशन का कहा डॉक्टरों ने, पर भगवान की कृपा रही, योग के माध्यम से आज भी हमारे यहाँ योग निकेतन में मरीज हैं, वो ठीक हो रहे हैं। जो चल नहीं पाते थे, हिल नहीं पाते थे, वो आज दौड़ रहे हैं
1: जी।
0: लखवा के मरीज हैं, आप कभी आए तो देखें, वहाँ मरीजों को देखें, मालूम पड़ जाएगा, उनकी मशीनें सारे एक्स्ट्रे देखें और वर्तमान में देखें, क्या है कराने का तरीका आना चाहिए, कितना करना, किसको नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या कराना, ये भी तो एक चिकित्सा है।
1: आप सामूहिक रूप से योग अभ्यास कराते हैं या व्यक्ति की बीमारी समस्या के हिसाब से?
0: पहले हम
1: विशेष प्रोटोकॉल देते हैं,
0: बीमारी देखते हैं,
1: बीमारी देखते हैं,
0: उसको बीमारी क्या है, हम सिर्फ उसकी शकल देख करके और उसके बातचीत के से अनुमान लगा लेते हैं इसको कारण क्या है, और उसी से उसको वो क्रियाएं बतलाते हैं। सामयिक नहीं, सामयिक तो अलग क्लास चलती है, मरीजों के लिए किसको क्या कराना, कितनी देर कराना, कितनी देर नहीं कराना, क्या खाना, ये सारा व्यवस्थित बतलाते हैं।
1: व्यक्ति विशेष के हिसाब से आप तय करते हैं कि किस तरह की मुद्राएं आसन करवाना जरूरी है?
0: सामयिक नहीं चलता इसमें,
1: सामूहिक तो उनके लिए जो स्वस्थ हैं और एक साथ कर सकते हैं,
0: फिर वो ठीक हो जाते हैं तो सामूहिक करते हैं,
1: सारे लोगों के साथ।
0: महिलाएं आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाओं में बहुत बीमारियां हैं, युवतियों में नहीं, बच्चियों में भी बहुत बीमारियां हैं।
1: डॉक्टर विष्णु आर्य जी, आपने बताया कि 96 वर्ष आपकी उम्र हो चली है, 250 से भी ज्यादा आसन मुद्राएं क्रियाएं आप किया करते थे। यदि आपसे पूछा जाए, अभी आप कुछ दिनों पहले बिस्तर पे थे, एक्सीडेंट आपका हुआ था, कोई एक खास मुद्रा या आसन जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर एक मुद्रा या आसन करने के लिए कहा जाए तो आप उसे जरूर करेंगे?
0: हाँ, कर लेंगे अभी।
1: उसका नाम क्या है और क्यों वो आपके लिए प्रिय है?
0: 3 क्रियाएं खास तौर से करते हैं, कमर सीधी हो और पेट ठीक ही हो, और प्राणायाम करते हैं तो गति रोकते हैं, उड्डयन बंद करते हैं, नेवली क्रिया करते हैं, और भस्त्र का प्राणायाम करते हैं। और हमारा प्राणायाम का नियम है कि 1 मिनट रोकना बाहर और 1.5 मिनट अंदर रोकना, ये हमारे, हम बिस्तर पर भी थे तब भी हम एक प्राणायाम करते थे। कई क्रियाएं हैं जो अभी अभ्यास के लिए है।
1: एक नाम ले लीजिए जो आपके बहुत प्रिय है।
0: प्रिय के लिए तो सभी प्रिय हमारे लिए जो अपने लिए अनुकूल हो वो प्रिय है, हर एक चीज़ हर एक को प्रिय नहीं हो सकती। हमारे लिए तो क्या कई चीज़ें हमारे लिए खास तौर से, हम लोग ध्यान वाले हैं
1: जी,
0: और उसी में हमें ज़्यादा लाभ है, हमें बाहर देखना नहीं पड़ता, हमें अंदर देखने में मज़ा आता है।
1: आपने अधिकतम कितने घंटे का ध्यान किया है?
0: वैसे हम 3.5-4 घंटे तो ध्यान कर लेते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि डिस्टर्ब हो जाते ना कई बार कई कामों में।
1: अभी कितना कर लेते हैं?
0: अभी भी हम करीब 40-35-40 मिनट अभी
1: भी ध्यान कर लेते हैं,
0: क्योंकि अभी एक आसन में बैठ नहीं पाते ना कमर के कारण, इसलिए हम थोड़ा दिक्कत होती है, पैर नहीं मुड़ते थे, पद्मासन में करने लगे थोड़ा हो।
1: ध्यान की मुद्रा का जो सुख होता है बहुत लोगों को हासिल नहीं होता है, बहुत अभ्यास के बाद, बहुत तपस्या के बाद वो ज्ञान या वो विधा या परंपरा आपके भीतर जागृत हो पाती है, तो आप उन श्रोताओं को या दर्शकों को बताइए ताकि वो आपके शब्दों के माध्यम से कल्पना कर सकें, कल्पना शक्ति में देख सकें कि ध्यान में जाने पे कैसा महसूस होता है।
0: देखिए, ध्यान जो है, ध्यानम निर्विषामना, ध्यान में कोई विषय ना हो उसका नाम ध्यान है। खाली किसी वस्तु को देखने का नाम ध्यान नहीं है। तो ध्यान में खाली वो सबसे सरल तरीका यह है, इसमें योग में अजपा जाप कहते हैं, खाली श्वास पर ध्यान दे, नीचे अंदर जाए श्वास की देखे, बाहर जाए श्वास बाहर देखे, और श्वास के साथ एक ही शब्द बोले, सो हम, इसे अजपा जाप कहते हैं। सो माने अंदर जा रहे, सो हम बाहर निकले, हम सो हम सो हम, जो वो है वो मैं हूँ, तो अर्थ इसका ये है। और इस पर श्वास पर ध्यान यदि लगाएंगे, मंत्र बोलेंगे, तो 6-7 मिनट में अंतर पड़ जाएगा। सबसे सरल तरीका, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं।
1: सांसारिक दुनिया से कट जाते हैं?
0: सांसारिक दुनिया से तो नहीं कटेंगे, ये तो बहुत लंबी साधन है।
1: हाँ।
0: इसके लिए तो अच्छे अच्छे लोग योगाचार्य बने हुए सब कर रहे, वो भी सब। ये संसार से दूर होना बहुत कठिन काम है। संसार में रहना है तो संसार के ढंग से भी रहना पड़ेगा। जब तक जनरेटर चालू नहीं होगा तो बिजली कैसे चलेगी?
1: जी,
0: है ना। सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि खान पान ठीक नहीं है, और तनाव बहुत है ऑफिस में, देखो हर जगह हर समस्या खड़ी है। तो सरल उपाय है कि 15 मिनट के लिए भी मरना सीख ली तो 23.5 घंटे जिंदा रहेगा। मरने का मतलब सारी दुनिया से अलग, विचारों की शून्यता, विचार फेंकते जाओ। हम लोग ध्यान कराते हैं खास तौर से विचारों की शून्यता को, कोई भी विचार आया मन में तुरंत तो देखा कर दिया, बाहर निकलो, तीसरा चौथा जितने विचार आए बाहर खाते जाओ। अब जो मोबाइल में भरोगे वही तो निकलेगा, गाली भरोगी गालियाँ निकलेंगी, भजन भरोगे भजन निकलेगा। अब मस्तिष्क में जो खारी खुरापात भरा हुआ है वो तो जब चालू होगा तो वही निकलेगा, इसलिए उसको साफ कर दो, फिर क्या रहेगा।
1: दिमाग में विचार आते रहते हैं, और कहा जाता है कि हमारा मन बहुत चंचल है, एक सेकंड पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो क्या कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति का दिमाग विचारों को निकालते निकालते विचार शून्य हो जाए?
0: होता है, मैं कहा ना, विचारों खाली कर दीजिए मस्तिष्क को। ये तो भगवान कहते हैं मन बहुत चंचल है, इसे बस में करना बहुत कठिन काम है, और वास्तव में कठिन काम। हाँ, उसको दिशा बदल सकते हैं, दिशा बदलोगी तो दशा सुधर जाएगी। तो दिशा बदलना है मन के लिए। यदि आपका समोसा खाने को कचौड़ी खाने को मन हो रहा हो, पेट खराब है, तो आप छोड़ दीजिए उसको, दूसरी चीज खाइए।
1: जी, खाने की बात हो रही है, खान पान पे विशेष जोर होता है आर्य साहब आपका, और आप कहते भी हैं कि कम खाओ गम खाओ। तो एक योग अभ्यासी के अलावा सामान्य मनुष्य जो है, बेहतर आहार विहार के लिए खान पान की कौन सी क्रियाएं, कौन सी पद्धति अपनाए?
0: वैसे योग के साथ साथ जो मनोविज्ञान कहता है या प्राकृतिक कहते हैं, खान पान शरीर के हिसाब से होता है। और अपने यहाँ तीन आने हैं, वात पित्त कफ, जिसकी जैसी वृत्ति होगी उस प्रकार से भोजन करेगा। अब उसके लिए ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए कौन सी वस्तु अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है, इसका एक सिद्धांत नहीं चल सकता। वात पित्त कफ वालों के लिए यदि दही पिलाओगे, दही खाएगा तो बीमार होगा। तो इसी प्रकार से भोजन में जो है उसके जो अनुकूल बैठे, और ज़्यादा तले हुए आजकल जितने भी गड़बड़ हो रहा है ना, सब्जी वगैरह सब, इनके कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो खान पान में सुधार कर लिया तो पैसे भी बचेंगे, डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, आजकल दवाइयों का हाल क्या जानते आप, तो वो सब बचेंगे। पर जहाँ जरा जीप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए खाने पीने पर, तो सारी समस्या हल हो जाएगी।
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है या जो विषय रखा गया है इस बार, वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। आप स्वयं 96 वर्ष के हैं, और बहुत सारे लोग बुजुर्ग तो होते हैं, उम्र बढ़ती जाती है उनकी, लेकिन स्वास्थ्य की स्थिति को वो खोते जाते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य को भी अपने बनाए रखें, तंदुरुस्त जीवन, जितना भी वो जीवन जी रहे हैं गुणवत्तापूर्ण तरीके से जिए, इसमें योग कितना सहायक है?
0: इसमें योग बहुत बड़ा सहायक है। उसका कारण यह है कि योग ये कहता है, खान पान ठीक रखो। बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में खान पान की इच्छाएं ज़्यादा होती, मन बहुत चंचल होता है, तो थोड़ा सा खान पान सुधारो, अच्छा भोजन करोगे सात्विक भोजन, तो विचार अच्छे रहेंगे, तनाव कम होगा। और बुढ़ापे में कम खाना और गम खाना जरूरी है, कम खाओगे तो ठीक रहोगे, ज़्यादा खाओगे तो बीमार बने रहोगे, तो सारी परेशानी होगी। तो वृद्धावस्था जैसे जैसे 50 के बाद आजकल शुरू होने लगी है। हम लोग तो 70-80 में मानते थे, पर खान पान सुधारना चाहिए और रहन सहन। आजकल बच्चे मानते नहीं, छोटी छोटी बात पर तनाव है घर में, तो परेशानी रहना ही है। और उसका उपाय यही है कि आधा घंटे एक घंटे को, जैसे हमने पहले कहा कि मर जाओ, 23 घंटे जिंदा रहोगे, योग करो, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो।
1: इस साइंस को आज हमारे श्रोताओं के लिए आप डिकोड कर दीजिए। आपकी सेहत का राज क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप इतने वर्षों से क्या अपनाते आए हैं?
0: हमारा शुरू से बचपन से रहा, हमारे अखाड़े वाले रहे तो शुरू से 5 बजे 4:30 बजे उठना, शौच आदि से निर्वृत्त होकर नहाना या व्यायाम करना, योग करना, और रात में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक भोजन कर लेना और 10 बजे तक सो जाना, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाना, ये दिनचर्या थी। अब क्या है, अब तो हालत ख़राब है। तो योग वालों के लिए एक नियम और भी है, योग दर्शन कहता है। योग के वास्तव में 8 अंग हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम नियम में भी लिया है उन्होंने, अहिंसा सत्यस्तेयम, ब्रह्मचर्य परिग्रहायमा, शौच संतोष, तप स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानिमा। इसके बाद ही योग आता है। फिर वे कहते आसनम स्थिरम सुखम, फिर स्थिरता पूर्वक बैठो, फिर प्राणायाम, और बातें तो बाद में सिद्धि वगैरह की आती हैं। तो ये जो है थोड़ा सा वर्तमान समय में खान पान सुधार लें, थोड़ा सा नियमित योग अभ्यास करें, 1 घंटा 40 मिनट जितना भी समय है, सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हैं, तो स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें और प्रसन्नता बांटें, एक दूसरे को ईर्ष्या न करें, प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहने का एक ही तरीका है कि अपने विचारों को बदलें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, गोली खाने का इलाज नहीं है।
1: दवाइयों से दूर रहना है, डॉक्टर से दूर रहना है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा और योग सबसे अच्छा माध्यम इसके लिए हो सकता है।
0: एक बात हम और कहते हैं जी, कि पैसा तो सबको चाहिए और पैसा कमाना भी चाहिए, पर हम लोग थोड़ा वैदिक पद्धति वाले हैं। हम कहते खाली लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो उनका वाहन क्या है, उल्लू, वह उस पर सवार होकर आएंगी और आएंगी तो घर में दुरुपयोग होगा, नालायक संतान होगी। तो हम लोग कहते भगवान विष्णु को भी बुलाओ, यदि वो साथ में आ जाए लक्ष्मी नारायण, तो वो अपनी गाड़ी गैरेज में रखाएंगे लक्ष्मी जी, अपने घर पर आएंगे तो बुद्धि भी ठीक रहेगी, परिवार में भी शांति रहेगी। कम से कम भगवान का ध्यान कर लो, अच्छे विचार रख लो।
1: आपसे यदि हम ये पूछें, हाँ, कि अपने जीवन को आप रिवर्स गियर में लेके जाएं, फ्लैशबैक में लेके जाएं, वापस से देखें और आपको अपनी जीवन यात्रा फिर से शुरू करनी हो, तो आप योग की दिशा में ही जाएंगे या फिर
0: हमें करियर
1: कुछ और चुनाव करेंगे?
0: कोई लेना देना नहीं, हमें तो एक ही गुरु जी ने आदेश दिया कि देना सीखो, बस दे रहा है उसमें प्रसन्न। हम किसी से भीख नहीं मांगते, दक्षिणा नहीं लेते, लेते हैं संस्था है, ट्रस्ट बना दी हमने, वो भी पद छोड़ दिए, तो वो सब संस्था चलाते हैं, मजदूर है, बिजली लगी है, पंखा है, सारा खर्च तो होता है, पर उससे भी मुक्त। हमारा काम सिर्फ ध्यान करना, योग सिखाना, हवन पूजन कराना, त्रिपल सुंदरी की साधना करना, गायत्री साधना बतलाना, यही हमारा उद्देश्य।
1: चलते चलते एक आखिरी प्रश्न, आपने योग को शुरू से देखा है, 70 वर्ष पहले से आज तक योग की यात्रा आपने देखी है, योग कहां से कहां पहुंच गया। आज जब दुनिया भर में योग की बात होती है, 21 जून को पूरी दुनिया के कई देशों में सामूहिक योग सत्राभ्यास होता है, तो आपको देख के कैसा लगता है?
0: हमें इतनी प्रसन्नता होती है कि योग में हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से भारत में सुसंस्कार भी बनेंगे और संस्कार बन भी रहे हैं। अब इतना जरूर है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी को रुचि ज़्यादा है, किसी को कम है, और विश्व के लोग जो योग के लिए खाली व्यायाम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, वो आज योग के प्रति समर्पण है और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। योग से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और योग वाले तो भाई ऐसा है, हम लोग तो योग वाले हैं, ध्यान देते हैं, बांटते हैं, इसलिए हम लोग उसमें प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता लेने की बात है, देने की बात है, अपने अपना स्वभाव संगत है
1: जी। बहुत वैज्ञानिक है योग का आधार और दुनिया भर में बहुत समस्याएं भी आज हैं। आपने बताया योग मानव कल्याण के लिए है, दुनिया भर में रिसर्च इसके ऊपर हो रहा है, लेकिन हिंसा की, अराजकता की, युद्ध की बहुत सारी समस्याएं बनती हैं, तो योग से कैसे इसका निवारण हो सकता है?
0: क्या योग में तो पहले तो खुद सुधरो, जब दूसरे को सुधारने की बात करो। आज विश्व में जितना तनाव बढ़ा हुआ है वो भारत में उतना नहीं है, और उसका कारण है कि अध्यात्म से लोग जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, जाप करते हैं, कथा सुनते हैं, हवन करते हैं, इसका परिणाम ये है। पर बाहर वो बात नहीं है, वहाँ तो खाना पीना मस्त रहना, अंतर इतना है। और भारत का बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि विश्व गुरु कहलाएगा, और भगवान की कृपा से तो पूरा भारत योगमय, व्यवस्थित और विश्व का कल्याण करने वाला विश्व गुरु बनेगा और बन के रहेगा।
1: चलते चलते कुछ संदेश अगर आप देना चाहें योग को लेकर के।
0: एक ही संदेश है, संदेश कहिए, प्रार्थना कहिए कि यदि जीवन को सुखी बनाना है, घर में सुख शांति चाहिए है, तो आधा घंटे के लिए कुछ आसन, प्राणायाम, ध्यान करना चाहिए, और बच्चों पर अच्छे संस्कार डालें, खुद योग्य बने तो बच्चे संतान योग्य बनेंगी। यही हमारा संदेश है
1: जी। दो लाइन में बहुत गंभीर संदेश आपने दिया, और जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, लेकिन शांति और सुकून के साथ जीवन जिया जाए तो जीवन बेहतर हो जाता है। और आपके जीवन को बेहतर बनाने में, गुणवत्ता परक बनाने में योग एक अचूक माध्यम है। योग को आपके अपने जीवन में अपनाना ही चाहिए। और आपने कहा कि पूरे परिवार में आधे घंटे ही सही, लेकिन योग अभ्यास सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से ज़रूर करें, और तभी आप बढ़ती उम्र के साथ भी स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर विष्णु आर्य जी आपका। आप 96 वर्षीय होने के बावजूद हमारे स्टूडियो में आए, और आपने हमसे इतनी लंबी बातचीत की, और योग के बारे में पुरातन संस्कृति से लेके आज तक योग की आपकी जो यात्रा है, देश दुनिया में आपने योग को लेकर के क्या देखा, क्या सीखा, क्या अनुभव किया, और समाज में क्या सिखाया, उसके बारे में बहुत ही गंभीर, उपयोगी और सारगर्भित वार्ता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको दीर्घायु, यशस्वी, कीर्तिमान बनाए। धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। सतह से शिखर तक योग का सफर। योग गुरु डॉक्टर विष्णु आर्य से योग और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की दीपक निषाद ने। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:11 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें। चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात की आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशां के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूँ या चांद हो तुम हूबहू।

0: अपने दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: यह है विविध

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: छूकर। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।